नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन सोमवारे शक संवत 1948 दे आषाढ़ महीने दी 1 तारीख, तदनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी अज 22 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 38 सैकेंड होए ने। साडे अज दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने ते असी अपने सारे ही स्रोतियां दा इस सभा दे विच बहुत बहुत स्वागत करदे हां।

दोपहर 12 बजे एफएम न्यूज हेडलाइंस। ते उस तो ठीक बाद प्रोग्राम होम स्वीट होम। दोपहर 1 बजे सुन पाऊंगी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज। प्रोग्राम दरमियान 1:40 तो 1:50 तक सुनोगे पंजाबी खबरां। दिला जो शायर है दोपहर 2 बजे।

एक बाद प्रोग्राम मसाला मिक्स एफएम न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर तो सुन पाऊंगे रात 9 बजे ते उस तो ठीक बाद तुहाडियां फरमाइशां ते आधारित प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे दिल चाहता है। रात 10 बजे प्रोग्राम शामे गजल और 10:30 बजे साड़ी सभा का आखिरी प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे एक प्यार का नगमा है। इस सन साढ़े हुण तो लैके रात तक दे प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा ते हुण विला हो गए भगती संगीत दे प्रोग्राम वंदना नूं सरवण करन दा बस कुछ कु पलां दे इंतजार ते।

परमात्मा दे नाम अलग अलग हो सकते ने। हर कोई इंसान उस ईश्वर नू अपने गुरु नू उस परमात्मा नू अलग अलग नामां दे नाल बुलाउंदा है, याद करता है, उदा नाम सिमरन करता है। मन दे विच रूप अलग हो सकते ने, लेकिन इस ब्रह्मांड नू चलाउण वाली ताकत बहुत ही शक्तिशाली ते साडे सारे ही जीवां दे अंदर उसका एक एक अंश वास करता है। ओ परम शक्ति दे रूप अलग अलग ने, नाम अलग ने, लेकिन जिस भी मन च उस दे रूप नू असी तार के सिमरन करते हाँ, वह सानू उसे ही रूप दे विच दर्शन भी दिंदा है ते साडी भगती नू स्वीकार करता है।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सर्वन कर रहे हो भगती संगीत नाल सजिया होया प्रोग्राम वंदना।

पेश नहीं एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता विच स्वदेशी तौर ते बने समुद्री फौज दे 3 जहाज राष्ट्र नूं समर्पित कीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जबलपुर विच राणी दुर्गावती यूनिवर्सिटी दे 36वीं कन्वोकेशन विच शिरकत कीती। राष्ट्रपति ने आदिवासी समूहां पछड़े वर्गां अते महिलावां दे शक्तिकरण लई सिक्ख्या दी महत्ता ते जोर दिता। केंद्रीय वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अते यूरोपियन यूनियन विचकार मुक्त व्यापार समझौते ते इस साल दसंबर तक दस्तखत होने की उम्मीद है। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मौके पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरधामा के दर्शनों 290 श्रद्धालुओं का जत्था कल पाकिस्तान लई रवाना होया। पंजाब सरकार वल्लों वित्तीय साल 2025-26 दौरान बजुर्गां लई चलाईयां गईयां वख-वख भलाई गतिविधियां विच बजुर्गां दी कुल हिस्सेदारी दा आंकड़ा 1,11,000 तों वध रिकॉर्ड कीता गया। पंजाब सरकार वल्लों 24 जून नूं मोहाली स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी विखे एनआरआई मिलनी 2026 दा आयोजन कीता जा रहा है। अमरीका अते ईरान विचकार अंतरिम समझौते नूं मजबूत करन अते पछमी एशिया टकराव नूं खत्म करन दे उद्देश नाल स्विट्जरलैंड दे बर्गेन स्टॉक विच गल्लबात शुरू हो गई है। हॉकी विच भारत ने ऑकलैंड विच न्यूजीलैंड नूं 2-0 नाल हरा के अपना दूजा FIH महिला नेशंस कप खिताब जीत लिया है। अते क्रिकेट विच भारत ए ने दांबुला विच 3 देशां दी लड़ी दे फाइनल मुकाबले विच श्रीलंका ए नूं 66 दौड़ां नाल हरा दिता है। इस हुण तक दे FM न्यूज़ हेडलाइंस। अगला प्रोग्राम बस हुण तो कुछ कु पलां दे इंतजार ते।

थैंक यू गॉड, परमात्मा दा शुक्रिया हर चीज दे ले। और मैनू लगदा कि इस बार परमात्मा नेड़े होके ना कईयां दी सुन रहा है, खास करके प्लेयर्स दी, क्योंकि जो जो असी प्रिडिक्ट कीता हुंदा है, मतलब पिछले हिसाब किताब नू देखते हुए, पिछली हिस्ट्री नू देखते हुए, वो बहुत सारे पैरामीटर्स होंदे ने जिस दी प्रिडिक्शन कीती जांदी है कंसिस्टेंट किसी प्लेयर दी गेम देखते हुए। लेकिन जिहड़े प्लेयर होंदे ने उन्होंने हाथ में भी बड़ा कुछ होंदा कि उन्होंने अपनी गेम किस तरीके दे नाल बदल लेनी है। और फिर सब तो

0: जी मैंने लगा
1: इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में पर जिंदगी में सुकून नहीं।
0: ऐसे करके मैं कह रही सी कि जी जिंदगी दी वजह से ऐदा ना ना करिए, जिस चीज नू प्यार करदे आ ओदे पिछे मेहनत ना करिए। मलाल ते फिर रही जांदा, फिर ते चाहे जिन्नियां मर्जी चीजां तुसी पा लो, सुकून नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, क्योंकि जेड़ी चीज दिल नू लगी हुंदी है ना, खुशी ते फिर ओदे मिलन दे नाल ही हुंदी है ना, ते चाहे गोल ही क्यों ना होवे। मतलब मैं फुटबॉल दे गोल दी गल कर रही हां। ओके चलो जिंदगी दे गोल दी भी असी गल कर सकदे हां, दे विच सारे गोल्स विच ही आउंदे ने, फुटबॉल दा भी ते जिंदगी दा भी। सो फीफा वर्ल्ड कप दे ग्रुप एफ दे मुकाबले दे विच जापान ने ट्यूनेशिया नू 4-0 दे नाल हरा के शिकस्त दे दित्ती है, और फीफा वर्ल्ड कप दे इतिहास दा 1000वां मैच सी ए, जिस विच वर्ल्ड कप दे विच मतलब जिहड़ा फीफा वर्ल्ड कप आपां गल कर रहे हैं, 4 गोल करन वाला पहला एशियन देश बन गया है जापान। ट्यूनीशिया की लगातार दूसरी हार है और नॉकआउट की रेस तो बाहर हो चुका है जी ट्यूनीशिया। उधरों असी गल करिए अगर यमाल मैच का, पहला गोल दागण वाले पेले तो बाद सब तो युवा खिडारी बन गए ने। अटलांटा दे विच स्पेन ने सऊदी अरब नू 4-0 ना दे दित्ती है टोटली मात, और इस मैच दे विच 18 साल दे स्टार लामिने यमाल ने सिर्फ 10वें मिनट दे विच गोल कर दिता है। इहदे नाल ही 1958 दे विच यानी कि ब्राज़ील दे पेले जिन्हां दी उम्र 17 साल सी और उन्होंने वर्ल्ड कप मैच दे विच स्कोरिंग करन दी शुरुआत कीती सी, सब तो युवा खिडारी, और उन्हां तो बाद हुण इन्हां दी वारी आ गई है 18 साल दे स्टार लामिने। 1958 तो बाद 2026 नवी नवी चीज़ां हो रही ने, नवे नवे रिकॉर्ड बन भी रहे ने, पिछले टुट भी रहे ने, बड़ा कुछ वखरा हो रहा इस बार फीफा वर्ल्ड कप दे विच। चलो बाकी गल्लां चलदियां रहणगियां, लेकिन फिलहाल टाइम हो गया है प्रभु का नाम लैके प्रोग्राम इंजॉय करते रहन दा। पूजा तोहानी तुहाडे नाल, स्टे ट्यून्ड ऑन FM Rainbow।

0: कि गुड फॉर नथिंग हो रहा है कम, लेकिन गुड फॉर नथिंग हुंदा नहीं है, लेकिन कम गुड हो रहा हुंदा है कितने कितने। परमात्मा साड़े स्टार्स दे विच कुछ ना कुछ लिख रहे हुंदे, बस थोड़ा जा वेट करना पैंदा हुंदा है। पूजा टोहानी दे नाल बिना वेट कीते अगला गाना एंजॉय करो। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर।
1: नथिंग ना ना ना ना नथिंग ना।

जमाने का काम की है, सिर्फ बोलना ही है ना, जमाना आप तो कुछ कर नहीं पाता और दूसरे ने गुड फॉर नथिंग बोला है, इस करके कभी भी जमाने की नहीं अपने दिल की सुननी चाहिए है। That's what I think and what I do. मैं ते ऐदा सोचदी हां और करदी भी हां, यानी कि सुनना नहीं हुंदा सी बाकियां दा। असी लोकां दी गल्लां अगर इग्नोर करांगे तां फायदे च रहांगे। और मैनू लगदा है वैभव सूर्यवंशी ने ऐदा ही कीता है, क्योंकि उन्होंने अपने दिल दी सुनी है और इसी वजह करके उन्होंने नाम एक होर रिकॉर्ड। अज आई थिंक अज का प्रोग्राम है ना जेड़ा, मतलब मंडे मॉर्निंग दे ब्लूज बड़े हैवी हैवी होंगे ने। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी सारी इनफॉर्मेशन दे विच ऐदा दी तुहानू न्यूज़ दवां, इंस्पिरेशनल मंडे तुहाड़ा बना देवा कि तुसीं सोचो कि हैं ये मंडे सी या इंजॉइंग वाला वीकेंड वाला फ्राइडे सैटरडे या संडे स्पेशल शो सी। फिर मैं तुहानू जांदे जांदे कहूंगी अरे नहीं अज ते मंडे मॉर्निंग वाला स्पेशल शो सी, क्योंकि मेरी गल्लां विच मेरी कोशिश होगी तुसी ये सारी चीज़ां भुल जाओ कि अज

0: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
1: Welcome back once again. Tune kita hai je tusi FM Rainbow nu dil se dil tak pahunchdiyan ne tuhadiyan gallan sade tak sade dil diyan gallan sadi zuban to hoke tuhare radio set de zariye tuhade kanna tak absolutely live. Filhal tune kita hai je tusi FM Rainbow nu 102.7 te 103.6 te and on the news on AIR app. और जिवें मैं तुहानू दस्सा सी कि अगली इनफॉर्मेशन है जी खासम खास ते ओ ए है कि अज जम्मू कश्मीर दे सब तो महत्वपूर्ण ते पवित्र धार्मिक आयोजना दे विच्चों एक मेला क्षीर भवानी दा दिन है। मुख रूप तो ए आपा ए कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडितां दा सब तो वड्डा त्यौहार है जो हर साल जिहड़ा ए ज्येष्ठ दा महीना है उसकी अष्टमी तिथि नूं मनाया जाता है शुक्ल पक्ष दी। तो ये एक वार्षिक मेला है जो मुख रूप दे नाल गांदरबल जिले के तुलमुला पिंड ते माता रागन्या देवी दे मंदिर दे विच आयोजित होंदा है जो श्रीनगर तो आप कह सकते हैं कि लगभग 25 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा ये जिहड़ा उत्सव है कुपवाड़ा अनंतनाग कुलगाम ते होर जिहड़े खीर भवानी मंदिर ने उन्हां दे विच मनाया जाता है। कोई खीर भवानी बोलता है और कोई क्षीर भवानी। मंदिर एक प्राकृतिक कुंड यानी कि झरने के उपर बनया होया है। श्रद्धालु माता नूं अर्पित करन दे लई दुध या फिर खीर लैके आउंदे ने और इसी वजह करके खीर भवानी भी कहिंदे ने इस मेले नूं। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਰੰਗੀਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਟਰਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ।

0: के साथ लोग आते हैं और इस दिन कोई को, काफी सारे लोग व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन खाते हैं, तो काफी श्रद्धा है कश्मीरों के इस स्थान से, बहुत ही श्रद्धा जुड़ी है।
1: जी सर, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने इसका धार्मिक इतिहास भी बता दिया और आपने उसका सभ्याचारिक इतिहास भी बताया कि किस तरीके से ये जो मेला है वहाँ का बहुत ही प्राचीन है ना मेला है, लेकिन एक चीज और इस मंदिर के बारे में और इस जगह के या इस मेले के बारे में प्रचलित हम कह सकते हैं कि इस मंदिर में एक पवित्र चश्मा भी है, झरना जिसको हम कह देते हैं, कि उसका पानी का रंग बदलता है, क्या ये सच है?
0: इसके बारे में जी, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्मल इसका जो जैसे हर अच्छे पानी का, साफ पानी का वो गहरा नीला रंग होता है
1: जी,
0: वो रहता है। और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जब कोई आपदा आने वाली होती है या जो कोई बुरा टाइम आने वाला होता है तो इस पानी का रंग बदल जाता है, वो या तो काला हो जाता है या लाल हो जाता है, वो एक इंडिकेशन मिलती है कि कुछ बुरा होने वाला है। ये लोगों ने इसमें काफी काफी सारी दवाइयां हैं, काफी सारी युग ऐसे बीते हैं, काफी सारा समय आया है जब जब ये हुआ है। और ये रिसेंटली जब 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ मिलिटेंसी की वजह से, तो तब भी वो लेटेस्ट उससे कुछ महीने पहले भी ये रंग बदल गया था पानी का
1: जी।
0: तो लोगों को लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है
1: जी।
0: ये है, ये श्रद्धा है। और इसमें जैसे खीर भवानी नाम के बारे में आपको बताऊं, मैं खीर भवानी क्यों बोलती हैं, इस चश्मे में नॉर्मली जब पूजा अर्चना के लिए लोग जाते हैं तो इसमें खीर चढ़ाते हैं, खीर माता को बहुत पसंद है,
1: माता को खीर का भोग लगाया जाता है,
0: दूध चढ़ाते हैं
1: जी।
0: तो जैसे हम शिव जी की भक्ति वो करते हैं तो शिव जी के ऊपर दूध डालते हैं या पानी डालते हैं, ऐसे इस चश्मे में वो खीर या दूध चढ़ाया जाता है, इसकी वजह से भी इसको खीर भवानी का नाम दिया गया है।
1: जैसे तो
0: माता रागिना भगवती
1: जी
0: की प्रतिमा वहाँ पे है जिनके साथ शिव जी की भी है,
1: तो क्या सर इसके पीछे भी कोई खास परंपरा भी है जिसके कारण माता को खीर का भोग लगाने की जो परंपरा की शुरुआत हुई, इसके पीछे भी कोई कहानी है?
0: कहानी ये इसके पीछे ऐसी कोई सच कहानी नहीं है, लेकिन ये हमारी हिंदू संस्था और हिंदू संस्थान जितने भी हैं या स्थापन जितने भी है, श्रद्धा ऐसी है कि जब भी कुछ घर में हमारे में कुछ शुभ होता है तो हम जरूर खीर बनाते हैं
1: जी।
0: और नॉर्मल में भी भोजन जब करते हैं तो भोजन के अंत में हम स्वीट डिश के रूप में हम खीर खाते हैं
1: जी।
0: तो ये खीर क्योंकि ये हमेशा इसका वो देवी देवताओं को भी जब हम भोग लगाते हैं तो खीर का भोग लगाते हैं या दूध का भोग लगाते हैं, तो ये ट्रेडिशन आप समझिए हमारे हिंदू इतिहास में इस तरह का रहा है
1: जी। और सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे देश विदेश से जो भारतीय हैं इस संस्कृति से जुड़े हुए श्रद्धालु हैं वो आकर इस मेले में इस समागम में हिस्सा लेते हैं और इसको भावनात्मक तौर से अगर हम जानना चाहें तो ये जो मेला है भावनात्मक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है, हम सबको जोड़ने में क्या भूमिका निभाता है?
0: बहुत ज्यादा भाव मतलब इसमें है कि देखिए एक तो हिंदुओं के लिए तो है ही, और हिंदू जैसे कश्मीरी खास तौर पर कश्मीरी तो वहाँ पे लोकल होने की वजह से उनमें है, लेकिन जो यहाँ से भी भारतवर्ष से भी जो हिंदू जाते हैं जैसे एज ए टूरिस्ट के रूप में जो भी जाता है वो जरूर इस स्थान पे जाता है। और ये नहीं कि आज के दिन तो एक खास मेला होता है, एनुअल मेला होता है जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और नॉर्मल में भी वो चलता रहता सारा साल, लोग सारे साल आते रहते हैं इधर जो भी विदेश से या इंडिया से आते हैं। तो इसके साथ ये है कि इसमें ये लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे अगर आप पूजा अर्चना करेंगे आज के दिन या सप्तमी की रात के दिन तो कोई भी मनोकामना जो आपकी होगी वो पूरी हो जाती है, ये एक श्रद्धा है, श्रद्धा बनी हुई है
1: जी।
0: इस तरह से। और इसको हिंदुओं का ही नहीं, मैं आपको बताऊं जो लोकल वहाँ के मुसलमान है उस एरिया के या उस गाँव के रहने वाले उनको भी इस पर बहुत श्रद्धा है, उनको भी उस पर बहुत श्रद्धा है। और आज के दिन खास तौर पर वो लोग स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे पूजा का सामान बेचने वाले जितने हिंदू हैं उससे ज्यादा मुसलमान होते हैं जो पूजा का वो सामान बेचते हैं आज के दिन, और

0: दिए वगैरह जगमगाते हैं वहाँ पे, वो बहुत बहुत सारा एक अनुप वो बहुत ही एक अनुपम दृश्य होता है, और बहुत
1: जी
0: बहुत सारा अच्छा, मतलब उसके वहाँ पे वातावरण ही ऐसा होता है कि जैसे आपको अपने आप वही लगता है कि कोई ऐसा स्थान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और
1: जी जी
0: कश्मीर के
1: जी
0: धार्मिक स्थानों में से तो ये दो तीन ही ऐसे हैं, और
1: जी
0: ये सबसे अहम है जहाँ हर कोई जाता है। ऐसे
1: जी
0: जैसे वहाँ पर्वत है, या कश्मीर में अभी वो यात्रा चलेगी अभी, या जो शिव जी की
1: जी
0: यात्रा है वहाँ
1: जी जी
0: अभी
1: जी
0: जो होने वाले हर साल होती है वहाँ
1: अमरनाथ
0: पे,
1: जी की
0: तो
1: यात्रा।
0: लेकिन ये इसका एक बहुत ही अलग ही एक महत्व है।
1: जी
0: वहाँ
1: जी
0: शंकराचार्य है, पर्वत है, लेकिन ये जो खीर भवानी है, खीर भवानी का बहुत ही अलग ही एक स्थान है।
1: जी सर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी आज के दिन के बारे में दी, लेकिन अंत में मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आज जो मेला खीर भवानी या क्षीर भवानी माँ का मेला है, इस मौके पर आप हमारे लिसनर्स को अपनी तरफ से अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, अंत में संदेश यह है कि एक सदा हमेशा हमारा जो फेथ है हिंदू धर्म में, तो हम मानते हैं कि हम विश्वास रखते हैं कि अगर आप श्रद्धा से प्यार से अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपका
1: जी
0: हर हर काम, जो भी आपकी आपदाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी, और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। और ये एक भाईचारे का भी संदेश है इसमें कि अबो ऑल कॉस्ट, जो जितने भी लोग हैं, मानवता के लिए है, ये नहीं कि हिंदू, ये जो भी वहां जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वहां पे जाके एक अलग सा, एक अजीब सा अनुभव होता है कि सारे सारे धर्म एक है, सारा इंसान एक है। जैसे
1: जी
0: गुरु वाणी में कहा है कि सारे सारा जग ये उपजा एक नूर, तो सब जग उपजा, क्या मंदिर क्या पर, वो सब निष्ठा का
1: जी
0: जो एक श्रद्धा है
1: जी
0: वहां पे एक आती है। और इस तरह का एक इस तरह के स्थान जहां जहां जहां जहां भी है, तो वहां यही भाईचारे की और एक
1: जी
0: मानवता का संदेश
1: जी
0: मिलता है हमें कि
1: सर आप जी
0: मानव एक है।
1: जी सर आप अपने कीमती समय से समय निकाल कर हमारे श्रोताओं के साथ इस अहम दिन पर अपनी तरफ से संदेश देने के लिए आए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, आपका ढेरों ढेरों शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपका
1: आपका।
0: भी पूजा जी, और आपके जितने सारे श्रोता आपसे जुड़े हैं उनका भी मेरा नमस्कार,
1: जी
0: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का।
1: जी हमें भी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
0: ओके।
1: सो लिसनर्स ने मैं दस दिया कि डॉक्टर रूप कृष्ण भट्ट जी दे नाल गल हो रही सी, जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड दिन विजेता ने, और इन्हों ने बहुत लंबा समा आप ये कह सकते कि कश्मीरी लिटरेचर ते कश्मीरी लैंग्वेज नू सर्व कीता, और इसी वजह करके इन्हां दे नाल अज असी गल कीती माँ क्षीर भवानी जी दे पवित्र दिन ते, जो कि मेला चल रहा है अज कश्मीर दे दिन। सो कश्मीर दे इस मेले दे विच जिथे माँ दे श्रद्धालुआं नू असी जाणिया कि उथे माहौल किदां दा है, उहदा इतिहास की है, इस तरीके दे नाल इह जो मेला है हर किसी नू जोड़दा है, मानवता दा संदेश दिंदा है। ते हुन टाइम हो गया है प्रोग्राम दे विच अगले गीत नू एंजॉय करन दा। स्टे ट्यून्ड।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां तियां तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स। और फिलहाल तुसी ट्यून कीता होया जी FM Rainbow नू 102.7 ते 103.6 एंड ऑन न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते। और वंस अगेन वेलकम बैक सारे दा। टाइम हो चुका है 9:04 और पूरे 20 सेकेंड FM Rainbow दी खड़ी थे। और बाहर का मौसम तो काफ़ी अच्छा अच्छा है, मतलब कूल कूल जहा। और जिमें मैं तुम्हें स्वेर का प्रोमिस किया कि अज दे मंडे मॉर्निंग दे ब्लूज़ नू असी पूरी तरह कन्वर्ट करांगे ग्रीन्स दे विच। मतलब कुदरत वालों तो बहुत सारा इशारा सानू मिल ही जाता है कभी कभी, जिमें कि राती रात का मौसम एकदम मतलब वधिया वधिया हो गया सी ना। जिथे पारा बहुत ज़्यादा सानू तंग कर रहा सी, उते एकदम कुदरत ने सानू दसे कि सारिया चीज़ा और खास करके सारी पावर उदे हाथ दे विच है। और ये पावर उदों हुंदी है जदों असी कुदरत नू प्यार करते हाँ, कुदरत भी इस बदले च फिर सानू ओना ही प्यार लाड़ दुलार करती है। लेकिन अगर असी कुदरत नू टेकन फॉर ग्रांटिड समझ के लै के और उसनू थोड़ा इग्नोर करते हैं तो फिर गल बनती नहीं है। तो और फिर जदों उन्हें गुस्सा आ जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें इदा दी होंदिया ने जिमें कि कुदरती करोपिया। नैचुरल डिजास्टर्स बचण दे लई मैनूं लगदा कि सानू अपने एफर्ट्स पाने चाहिए ने। एफर्ट्स ते हर चीज़ दे लई बहुत जरूरी ने, दैट्स वट आई थिंक। तुहानू की लगता है? चलो आवाज़ तो तुसी पछाण लिया होएगा, लेकिन अगर नहीं पछाणिया तुसी और तुहानू लगदा तुसी पहली बार सुने तो मैं तुहानू दस दिनी आ तुहाडी दोस्त आर जे पूजा टोहानी बनी हुई है जी तुहाडे नाल। ऑल फिलहाल टाइम हो चुका है तुहाड़े फेवरेट वाले रेडियो शो का जिसका तुहानू बेसब्री दे नाल रहिंदा है जी इंतजार, यानी कि दिल अपना पंजाबी दा। मतलब पंजाबी जरूरी थोड़ी है पंजाब च बैठे होण, मतलब जिथे मर्जी बैठे होण वाइब हुंदी है जी पंजाबियों की। और ये वाइब तुसी कैच करते हो इंजॉय करते हो FM Rainbow के जरिए देशों विदेशों के कोने कोनिया दे विच बैठ के। और प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे विच तुसी भी शामिल हो सकते हो अपने प्यारे जी मैसेज के जरिए। बस मैसेज बहुत ज़्यादा लंबे ना होण और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हाय हैलो तो इलावा कुछ अच्छे अच्छे मैसेज भेजो ना मैनू व्हाट्सएप पर, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजो। दसो मैनू फिर प्रोग्राम सवेर का किदा का लगा, कि इन्फॉर्मेशन तुहानू चंगी लगी। और अगर कोई ऐदा दी इन्फॉर्मेशन तुसी साडे नाल सांझी करना चाहते हो जो तुहानू लगता है कि पता होनी चाहिए है बाकियां नू और सानू भी पता होनी चाहिए है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है और क्रिएटिव जो कुछ करते हो शेयर कर दो। नंबर है जी 9855101027।

जी कितना ना लगा फिर जलसा। एफएम रेनबो ते दिल अपना पंजाबी दे विच एंजॉय कर रहे हो तुसी। वधिया वधिया गल्लां मेरियां तुहाडियां अपनियां ते नाल दी नाल वधिया वधिया गीत। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तुहानू सुनावां। चलो मेरियां गल्लां ते चलदियां रहणगियां नाल दी नाल, लेकिन इन्ना पता है गर्मियां दी छुट्टियां चल रहियां ने, मैनू तो मेरे बचपन दी बड़ियां सारियां गल्लां याद आ रही ने कि मेरा होमवर्क कदी भी कंप्लीट नहीं सी होया करदा। और उहदे लई मैं हमेशा शायद भी गल तुहानू एक बार मैं पहला भी दसी सी गर्मी दी छुट्टियां शुरू होने तो पहला, एक बार फिर दस दिनी हाँ कि मैनू पता कि अजकल ना जिहड़ा होमवर्क है बड़े क्रिएटिव जे वे दे नाल है ना मिलता है बच्चों। साढ़े टाइम तो बिल्कुल मतलब कहते ना कि कापियाँ कालियाँ करन वाला सिस्टम हुंदा सी, लिखी जाओ पेज भरी चलो, एक नहीं दस दस पेज भी पेज इदा इदा मिलया करता सी, बड़ा बोरिंग लगता सी बेसिकली। प्रॉब्लम यह सी मेरा होमवर्क ना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक ते रणनीतिक शक्ति विच समुद्री समर्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदी है ते भारत इस नूं मजबूत करन वल तेजी नाल अगे वध रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 नूं एक विश्वव्यापी उत्सव बनाउण लई दुनिया भर दे लोकां दा धन्नवाद कीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कुनो नैशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा भी लिया। भारत अज तो नवी दिल्ली च ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारा की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA अज तो UGC नैट जून 2026 की प्रीख्या शुरू करेगी। पंजाब सरकार वालों वित्तीय साल 2025-26 दौरान बुजुर्गों लिए चलाई गई वख वख भलाई गतिविधियों में बुजुर्गों की कुल हिस्सेदारी का आंकड़ा 1,11,000 तो वध रिकॉर्ड किया गया। पंजाब सरकार वालों 24 जून को मोहाली स्थित MIT यूनिवर्सिटी विखे NRI मिलनी 2026 का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड

म्यूजिक लियाज आकाशवाणी एफएम रेनबो और 10:03:10। अरे अरे अरे स्माइल करन तो देखो बहुत सारे मौके थानू मिल जांदे नहीं और एफएम रेनबो ट्यून इन करके भी देखो तुम्हारे फेस ते ऑटोमेटिकली आज स्वेर दी स्माइल है क्योंकि जर्नी इन्नी सोहनी तुसी एंजॉय करे सी अज ते उस जर्नी नू हुण अगे जी ड्राइवर चेंज हो गया। देखो एक जदों गड्डी चलती है और उस ट्रेन का डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन से होकर कई बार होंगे ना कि ड्राइवर चेंज हो जाता है, हुण जिहड़ा ड्राइवर है वो चेंज हो गया एफएम रेनबो ते मेरे नाल तुसीं इंजॉय करोगे अज्ज दा सफर। कौन है साइड रेडियो दे सुरिचा है जी अज्ज ते रिचा दे नाल ठीक दोपहर दे 2 बजे तक हुण तो लैके 2 बजे तक ये जर्नी जिहड़ी है तुसीं इंजॉय करन वाले हो। सो सब तो पहला तां रेनबो सुनने वाले सभी दोस्तों नू नमस्कार सत श्री अकाल आदाब या हाल चाल वधिया ही होणगे। वैसे उन लोगों के तो बहुत वधिया है जिन्हां दीआं वेकेशंस चल रही ने छुट्टियां खासकर छोटे छोटे बच्चे स्कूल तो आराम ना ला। हाँ मैंने पता है कि होमवर्क जो भी होलीडे है वो कर चुके हो तुसी ते छुट्टियां भी मस्त एकदम चल रही ने और बस उन कुछ ही कुछ दिन रह गए कर लो इंजॉय उस तो बाद वापस वही रूटीन शुरू हो जानी है। सो किवें चल रही जी तुहाडी छुट्टियां वेकेशन बाकी बहुत सारिया गल्लां बातां करांगे आपां फिलहाल इंजॉय कर रहे हैं जी इंजॉय करना स्टार्ट करांगे प्रोग्राम गीत बहार शुरुआत कर रही हैं और इस गीत दे नाल फिलहाल जुड़े रहो मेरी यानी रिचा के नाल 102.7 FM रेनबो दिल से दिल तक।

लाइफ दे विच आप अब यही लाइन कह रहे हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, और जो फिर हो जाता है वो देखा नहीं जाता। इस करके अपने आप थोड़ा सा देखो, आप कुछ भी एफर्ट्स कर रहे हैं किसी भी चीज लिए है ना जी, सो बहुत जरूरी है कि थोड़ी सी प्लानिंग करिए और सिर्फ ये ना सोचिए कि चलो जो भी कंडीशन आएगी प्लानिंग करांगे, मेहनत कर रहे हैं किसी भी चीज लिए, किसी सुपने लिए है ना, तो थोड़े बहुत एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं, टाइम टू टाइम करते रहिए। उस तो बाद फिर सानू पता है साढ़े दिल नू कि हाँ जो भी चीज होगी इन फ्यूचर जिदे लिए आप मेहनत कर रहे हैं और जो कुछ भी अभी मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं तो वो वधिया ही होगी। फिलहाल वधिया हो रहे जी इतने एफ एम रेनबो से ट्यून इन किदा होया तुसी 102.7 एफ एम रेनबो से प्रोग्राम चल रहा है जी गीत बहार और अगला गीत स्टूडियो के विचार तो थोड़े रेडियो सेट से भी बिल्कुल है तैयार स्टेडियम।

प्यार करना बहुत जरूरी है। थोड़ा टाइम अपने लिए जरूर कड्ढो और जिस चीज़ विच मज़ा आता ना, हर एक चीज़ देखो, बहुत सारिया चीज़ा ने और दिन की शुरुआत आप करते हैं और जो तक दिन खत्म नहीं हो जाता, रात नहीं पै जाती, उदों तक किन्ने सारे काम होंगे ने। सो एटलीस्ट उस टाइम के है ना, उन्होंने सारे कामों के अपने लिए थोड़ा जहा टाइम जरूर कड़ो और जिस चीज़ नाल भी प्यार है, भावें पेंटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है, कुकिंग कर सकते हैं, कोई गीत सुनने का दिल कर रहा है ना, तो उस गीत नु सुनिए। हो सकता है कि अगला गीत किसी का सुनने का दिल कर रहे हो और मैनू बाद थैंक यू कर देना जिसे लिए भी है ना, जिन्होंने भी ये गीत वधिया लगे। सो इंजॉय करते हैं जी रेखा भारद्वाज की आवाज़ में। प्रोग्राम चल रहा है जी गीत बहार, स्टे ट्यून्ड।

39 सेकंड। आवाज सुन के मैनू पता है बहुत सारे दोस्तों उस टाइम अंदाजा की हो गया, पता ही है कि 11 बजे तो लेके 12 बजे तक तुसी एंजॉय करोगे हुन प्रोग्राम पंजाबी तड़का। और तड़का देखो फरमाइशा तो लगना ही लगना, नाल ही नाल बहुत सारियां गल्लां बातें और एक खास चीज़ अज आप गलबात करांगे। वो चीज़ की है, वो थोड़ा जहा सस्पेंस रख दें। और 0181-23-42-174 नंबर डायल करके तुसी इस प्रोग्राम च जिन्हें भी नवे नवे दोस्त ने उन्होंने ये नंबर थी और जिन्हें पुराने दोस्त ने उन्होंने तो पता ही है कि किस प्रकार मतलब तुसी इस प्रोग्राम च जुड़ सकते हो जी मेरे नाल रिचा दे नाल। सो इंजॉय करते हैं जी पहला इस प्रोग्राम का गीत अमरिंदर गिल की आवाज़ के, उस तो बाद मिल रही हो तुम सिर्फ स्टे ट्यून्ड।

0: देखो मैं तो बैठी हुई हूँ और मेरे नाल नाल बहुत सारे दोस्त इस टाइम पर आके 11:25 35 सेकंड हो चुके ने, तो ये प्रोग्राम पंजाबी तड़का कर रहे ने जी एंजॉय। और एक दोस्त जुड़े ने साडे नाल। हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल मैडम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन दोस्त गल कर रहे ने?
1: अर्जन सिंह, पिंड माले वाला, जिला फिरोजपुर।
0: जी अर्जन सिंह जी, हाल चाल वधिया?
1: हाँ जी, बहुत वधिया। कॉल अचानक लग गई ते शॉर्ट जा लग्या वे के सुपना दे देख रहा।
0: अचानक मतलब अचानक किवें लगदी है कॉल?
1: पता नहीं लगता मेरा कदों लग गई।
0: अच्छा मतलब सुते पए सी तुसी?
1: पता ही लग गए, घंटे लाए के कॉल, फिर भी नहीं लगती। कह रही
0: मैनू पता की लग गया, मतलब सुते पए सी तुसी, अचानक ही कॉल लग गई। ऐ हुंदा अचानक मेरे लिए तां। ठीक है ठीक है अर्जन जी, चलो बहुत वधिया। सो अर्जन जी, तुहाडा भी कोई काश हैगा जिंदगी दे विच कि मैं ये चीज मतलब हो सकदा सी काश या रिप्लेस करदा?
1: कोई गिलवा शिकवा नहीं, जो है मालक ने खुश होंदे जी रजा च।
0: गिलवा शिकवा नहीं है, कोई गिलवा शिकवा नहीं। अरे वाह बहुत वधिया, चलो जो है ठीक है, खुश हो तुसी अपनी जिंदगी नाल।
1: जी जी बिल्कुल,
0: फिर हंस के दिखाओ। ठीक है ठीक है, चलो हुण मैनूं यकीन हो गया कि तुहानूं कोई गिलवा शिकवा नहीं है, खुश हो तुसी। चलो गीत कड़ा सुनना है, दस दो।
1: कुलविंदर बिल्ला दा ला दो अटीना सॉन्ग शैन तो विद।
0: ठीक है चलो, जाओ तुसी उपर चढ़ जाओ, फिर लाओ जाके अंटीना, मैं गीत लगा रही हूँ।
1: ठीक है, मैं ऊपर चढ़ दूँ।
0: ठीक है जी, ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया। और इन्हां दी आवाज़ जड़ी है कुलविंदर बिल्ला दी आवाज़ कह रही हूँ। अरे इंजॉय करो तुसी हुण रेडियो सर्ते, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है जी पंजाबी तड़का, और तड़का लग रहा है फरमाइशां दे नाल नाल दोस्तां दीआं गल्लां बातां दा भी। स्टे ट्यून्ड, रिचा तुहाडे नाल जुड़ी हुई है जी, दिल से दिल तक।

0: 01812342174 इस नंबर को डायल करके अगले दोस्त कौन जुड़े ने जी आज प्रोग्राम से। हेलो
1: हेलो रिचा मैडम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैडम जी।
0: हेलो नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग जी, कौन दोस्त?
1: मेरे बिट्टू हो रहे दूरदर्शन की बैक साइड मंगलूर से जी रंदो मैडम जी।
0: बिट्टू जी एड्रेस नहीं दस्ते ता भी मैं तुम्हें प्रोग्राम से शामिल जरूर करना सी। ठीक है चलो और सुनाओ की हाल चाल है।
1: हां जी बहुत बढ़िया, तुम्हारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश कर रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू तुम्हारा जी।
0: चलो काम तो होता है। अच्छा थैंक यू भी करता, वेलकम भी करता, बस ठीक है फिर मैं जाऊं, मेरा काम खत्म। जावा मैं जावा
1: याद
0: करे
1: अच्छा
0: वाह गई, बहुत जरूरी है आज के टाइम से। ठीक है चलो गीत केड़ा सुनना है दसो।

0: सो टाइम इज एग्जैक्ट 11:47 और 11:12 सेकंड भी नाल ही नाल ने और नाल ने जी साढ़े नाल लगे दोस्त। हेलो
1: हेलो बेटे नमस्कार जी, प्रवीण बोल रहा गोपाल नगर से।
0: प्रवीण जी आराम नाल मैं तो अच्छा पूछने वाली सी, तुसी पहले ही सारा कुछ दस दिता। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है। ख्वाहिशां
1: पूरियां होनियां ही नहीं। देखो जी जो भी है नाल इको ही जाना चाहिए। यही अरदास करिए जिन्ना ही परमात्मा का नाम लिए उन्ना ही घट आए उन्हें ही नाल जाना सर।
0: बिल्कुल ये तो तुसी ठीक है। चलो फिर आप भी नाल चल दिया हूँ अगले गीत वाल केड़ा की सुनना है तुसी।
1: एवं ही बंदा कहना मैं किसा वो किसा करना करोन वाला परमात्मा वा
0: शामिल कर दे।

0: मैं क्या जी एंजॉय कर रही थी तो सी हरभजन मान दी आवाज। आहा जनाब क्या आवाज है, और देखते हैं अगले दोस्त की आवाज कितना दी है। हेलो
1: हेलो, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन दोस्त?
1: मैं संदीप सिंह बोल रहा हूं अमृतसर।
0: मैं ऋचा बोल रही हूं जी स्टूडियो तो।
1: ठीक है।
0: संदीप जी फरमाइश दस दो, क्योंकि तुसी आज दे लास्ट कॉलर बन चुके हो, उस तो बाद असी नहीं लेना किसी कॉलर नु, क्योंकि प्रोग्राम टाइम हो गया साडा। जल्दी जल्दी दसो।
1: आशा सिंह मस्ताना गाना।
0: अच्छा जी, केड़ा गीत सुनना है ना? दा
1: पेके जान वाली
0: चली गई।
1: हां जी चली गई,
0: पैर जान आने वाली भी है, भी इंतजार करो ना दा।
1: ठीक है
0: चलो जी, कॉल करने दे लई शुक्रिया। तो संदीप जी दी जड़ी फरमाइश है वो आप जरूर इंजॉय करांगे जी। आपा लगा रहे हैं जड़ी आवाज़ है इसन सुनोंगे, तो उस तो बाद बस तुसी मेरे नाल जुड़े रहना रिचा के नाल, क्योंकि और भी बहुत कुछ खास है अगे जड़े प्रोग्राम्स ने 12 बजे 1 बजे। सो ट्यून इन रहना जी FM Rainbow के नाल।

जी थोड़ी हाजिरी दे विच है ना जी। और पता ही है बहुत सारे दोस्तों ने कि इस प्रोग्राम से देखो हर एक तरीके की जी इनफॉर्मेशन है ना तो मिलती है, और कोशिश तो आप ही करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जिन्हें भी मतलब टॉपिक्स ने या फिर कुछ भी चीज़ा ने, हूँ देखो ये जड़ा होम है, मैं हमेशा कहती हाँ जी स्वीट होम बन रहा बहुत सारिया चीज़ों के नाल और परिवार के हर एक मैंबर के नाल है ना। सो छोटे छोटे कुछ चीज़ा ने, कुछ नुस्खे ने, रेसिपीज़ ने या फिर कुछ तरीके ने, कुछ DIY हैक्स ने, कुछ भी क्रिएटिविटी है हर एक चीज़ के नाल ये जड़ा प्रोग्राम है खास बन जाता है। फिलहाल इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है जी रिचा और नाल ही गिरपी गरीवाल कह रहे हैं जी पहले मेरी आवाज़ सुन लो उस तो बाद आ रही हूँ जी मैं इतने ही पेन कॉपी लेके बैठी हूँ क्योंकि बहुत कुछ खास है आज के इस प्रोग्राम। जस्ट स्टे ट्यून्ड।

सो वॉक मैं कर लेनी हाँ तो टॉक तुसी कर लो। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी उल्टा बोल देता मैं कह रही जी टॉक मैं कर लेनी हाँ तो वॉक तुसी करो क्योंकि चलते चलते जेकर इस टाइम रेडियो सुन रहे हो तो बहुत वधिया गल है ना। वॉक दी वॉक हो रही है एक्सरसाइज दी एक्सरसाइज हो रही है नाल ही नाल इनफॉर्मेशन दी इनफॉर्मेशन मिल रही है। सो फिलहाल प्रोग्राम इंजॉय करो तुसी होम स्वीट होम। और अगली इनफॉर्मेशन देखो बड़ी कमाल दी मैं लैके आई हाँ ये प्लांट्स नाल जुड़ी हुई है। मैं पहले ही कहता क्योंकि अपने घर के सानू बहुत ज़्यादा शौक हों कई लोगों है ना किचन गार्डनिंग करन दा या फिर सोहने सोहने बूटे आप रख लें तो उन्होंने एक बूटा है जी मनी प्लांट। हुण तुसी कहोगे अरे मनी मिल जाए थोड़ी जी है ना लालची थोड़े जे हो जाते हैं बट खैर ये मनी प्लांट का जो आप प्लांट घर के लगाने सो बहुत वधिया लकी मानते हैं कई लोग इस चीज़ में और कहें कि बहुत पॉजिटिविटी आती है इस प्लांट के नाल। सो हो सकता है कि मनी प्लांट थोड़े घर के भी हो है ना जी। और कई बार की होंगे कि बहुत अभी उसकी ना मतलब देखभाल तो बहुत वधिया तरीके नाल कर रहे हैं लेकिन कई बार ना जो पत्ते होंगे ना इस मनी प्लांट के वो मुरझा जाते हैं या फिर आप भी बकायदा पूरा दे रहे हैं प्रॉपर है ना फिर भी वो ग्रो नहीं कर रहा मनी प्लांट साडा उदे का उत्थे ही खड़ गया। सो उस चीज़ को दूर करने आप कुछ उपराले कर सकते हैं। नोट कर लो तुसी एक्सपर्ट तो यही कहें कि मनी प्लांट के लिए ना सब तो वधिया जी वर्मी कंपोस्ट। सो जी वर्मी कंपोस्ट है देखो ये नाइट्रोजन फॉसफोरस हो गया पोटेशियम हो गया मतलब इन शॉर्ट मैं कह लवा कि वह सारी जरूरी चीज़ा ने इस वर्मी कंपोस्ट जो कि मनी प्लांट नू ग्रो करन लई चाहिए है। उन्हां दी जिहड़ी बेल है मनी प्लांट की वह भी वधेगी है ना जी और ग्रो करनगे पत्ते बहुत सोहने हो जाते हैं। सो कहिंदे ने एक्सपर्ट कि महीने दे विच एक दो वारी आपां है ना जी दो तो तीन चमचे वड्डे चमचे इस वर्मी कंपोस्ट दे जिहड़े है बाजार तो आपां लिया के मनी प्लांट दे पौधे दे विच मिला सकते हैं। और एक होर तरीका है वो तरीका की है दसांगे तुहानू। अरे जनाब बैठे हो तुसी मेरे नाल इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम होम स्वीट होम। अगला तरीका लिखना है तो नोटबुक जिहड़ी है ना वो अपने कोल ही रखियो क्योंकि एक होर तरीका है मनी प्लांट दे लई ताही तां जल्दी जल्दी फिर मनी मेरा मतलब है प्लांट ग्रो करेगा। रहो मेरे नाल ट्यून इन FM रेनबो ते दिल से दिल तक।

और मैं याजी 102.7 FM रेनबो से एंजॉय कर रही हूँ प्रोग्राम होम स्वीट होम और रिचा आज जुड़ी हुई है थोड़े नाल मेरे नाल कौन कौन है अपनी हाजिरी लगा रहे हैं अपने आप को काउंट कर लियो क्योंकि मैंने तो पता नहीं ना स्टूडियो के बैठे बैठे लेकिन तुम अपने आप को जरूर काउंट कर सकते हो और काउंट तो वैसे आप मसाले कर रहे थे लाल मिर्च पाउडर जीरा हींग धनिया पाउडर हो गया नमक हो गया और हल्दी हो गई और होर की चाहिए जी तड़के लिए पता ही है तुम्हें सारे चलो जिन्होंने नहीं पता हूँ मैं दस रही हूँ सारा समान आप जिहड़ा चना दाल सब्जी अज बना रहे हैं और नॉर्मली जिवें आपां चने दाल नूं देखो सीटी दिलवानी है दो सीटियां नूं है ना जी बजवा देनी है और 200 ग्राम जिहड़ी चना दाल आपां लेती है उहदे विच थोड़ा जिहा नमक स्टार्टिंग दे विच कई लोकी पा देंदे ने जदों आपां बॉयल कर रहे हैं उस दाल नूं और नहीं बना है तुहाडी मर्जी है आपां तड़के दे टाइम भी वो नमक जिहड़ा है उहदे विच पा सकते हैं हल्दी थोड़ी जी पा ली है और पानी पा के एटलीस्ट 350 ml जिहड़ा पानी है ना या अपने अकॉर्डिंग जेकर असीं दाल देखो आदत हो जाती है जो आप दाल या चावल या रोटी जो आप बना रहे होंगे तो चना दाल किमें बनानी होंगी सूँ पता ही है सो 350 ml पानी जो आप पाया है ना पा के ज़्यादा नहीं दो तो तीन सीटी जो आप बजवा दी है ना उस कुकर प्रैशर बन गया है सो बस वो बंद कर देनी है कि उस तो बाद करना की है एक पेस्ट तैयार करना है पेस्ट जो मैं समान देखो तुहानू दस्या कि प्याज टमाटर अदरक लसन दो तीन मीडियम प्याज हो गए और टमाटर जो आप दो तो तीन छोटे टमाटर लेते हैं है ना जी और एक छोटा चमचा अदरक अपने अकॉर्डिंग और लसन क्योंकि आप पेस्ट बनाना इस चीज़ का हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग जेकर बहुत तिखा खाना है ता भी और बच्चों नाल खिला लिया देखो बच्चे तिखा पसंद नहीं कर दिया तो उस अकॉर्डिंग अपना मिर्च रखनी है और बस इन्होंने चीज़ों का एक पेस्ट तैयार करना है कई बार आप करते हैं तड़के के टाइम ना दाल में जो आप तड़का लगा रहे हैं तो टमाटर और प्याज कट के उन्हें आप तड़के दे विच पाने है ना लेकिन इस वाली दाल दे विच ना चना सब्जी जी दाल आप बना रहे हैं ये टमाटर प्याज का आप पेस्ट बनाना है ठीक है पेस्ट बना के पेस्ट का तड़का लगाना है उस तो बाद जो भी मसाले पैने हैं ठीक है जी सो इन्नी गल क्लीयर हो गई है कि पहला अपना दाल नूं आपां बॉयल कर लिया जी दो तो तीन सीटी दिलवा के है ना जी पता लग गया कि दाल पक चुकी है उस तो बाद ये पेस्ट तैयार कर लिया है टमाटर प्याज अदरक लसन और हरी मिर्च ये जो चीज़ां पाई ने पेस्ट तैयार कर लिया हुण एंड दे विच बस तड़का लगाना है क्योंकि अपने कोल पेस्ट भी रेडी है दाल भी रेडी है तड़का किवें लगेगा ये तुहानू इस गीत नूं सुनन तो बाद पता लगेगा क्योंकि इहदे विच भी दाल मखनी नूं तड़का लग रहा है फिलहाल साडे कोल दाल मखनी नहीं है आपां बना रहे हैं जी अज वायरल चना दाल सब्जी तो मेरे नाल लैना जी ट्यून इन दिल से दिल तक

मैं तो पहले ही क्या जो सफर चल रहा है, देखो प्यार एक दूजे नाल हुंदा है ना जी, ताही ता जेड़ा सफर हुंदा है ना वो खूबसूरत बन जाता है। प्यार ही रखिए अपने दिलों के बच्चे, और की चाहिए, नफरत रख के करना भी की है, छोटी जी तो जिंदगी है ना। और कल में कोई शख्स सू याद करे किसी गुस्से नाल कि वो मैनू मिलिया सी या मिली सी और वधिया नहीं लग्या, सो मुलाकात करो किसी दिन नाल, जिस दिन भी नाल मुलाकात हो रही है मुलाकात अजि होनी चाहिए है कि ना उस शख्स को पूरा दिन तो पहले याद ही रहना चाहिए कि हाँ मज़ा आ गया है ना उस बंदे की, जिहड़ी जो भी जिस भी नाल मुलाकात कर रहे हैं उसकी एक समाइल सानू हमेशा याद रहती है। तो सोचो उसदियां जिहड़ियां गल्लां बातें होणगियां वो साडी जिंदगी ते किन्ना इंपैक्ट करके जाणगियां। सो उदां दा ही परसन बनना है, सफ़र इंजॉय करना है जिंदगी का। और अगला गीत भी लता दी आवाज़ विच, स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज़ और रिचा तुहाडे नाल है और मेरे नाल तुसीं कर रहे हो अज दा ए म्यूजिकली सफ़र। इंजॉय दिल से दिल तक।

0: और फिर देखो प्यार दी गल हो रही है हर एक गीत दे विच। प्यार तो वैसे दोस्तों नू भी है। इस टाइम 1:18:30 हो चुके हैं और प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज कर रहे हो जी तुसी एंजॉय मेरी यानी रिचा दे नाल। और प्यार तो मेरे ख्याल अजकल जो मौसम हो रहा है ना जी इसके नाल भी बहुत सारे दोस्तों नू प्यार है और प्यार FM रेनबो दे नाल भी है। ताही तो देखो ट्यून इन करके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम्स इस टाइम या फिर कोई भी टाइम हो तुसी ट्यून इन करके सुनते हो इंजॉय करते हो। और जिस टाइम मैसेजेस का टाइम भी नहीं होंगे ना उस टाइम भी दोस्त सानू मैसेज करते हैं उन्हों का प्यार ही है। सो बहुत वधिया लगता है प्यार देख के। और चलो फिर इसी प्यार के नाल असी अगले गीत वल वध रहे हैं जी। मोहम्मद रफी की आवाज़ इसके नाल हर किसी नू प्यार है अज के टाइम च भी इस आवाज़ का जादू बरकरार है। तो इंजॉय करते हैं जी अगला गीत।
1: इक ना

अरे राजा नू रानी मिलनी है ते रानी नू राजा मिलना है ताही ता कोई कहानी बननी है और उना कहानियां नू फिर मिलके ऐसे एंजॉय करना है जी, है ना जी। और हो सकता तुसी भी कोई कहानी सुनी हो राजा रानी दी या फिर कोई भी कहानी जिदे नाल तुहानू भी बहुत ज़्यादा प्यार हो और इस कहानी नू सुन के तुहानू वो कहानी याद आ गई हो, है ना। सो बहुत सारिया चीज़ा किसी ना किसी गीत नू सुन के सानू भी अक्सर याद आ जांदियां ने और फिर उहदे नाल ही कोई ना कोई कहानी जुड़ती चली जाती है। अगले गाने की कहानी की है तुसी देखो क्योंकि इहदे विच भी कुछ ना कुछ है जो राजा रानी कर रहे हैं। तो इंजॉय करते हैं जी प्रोग्राम का अगला गीत। स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज दो दिनां दे सरकारी दौरे ते मंगोलिया पहुंचे। भारत ते मंगोलिया दरम्यान विशेष भाईवाले नूं अगे वधाउण लई सुचारू चर्चा होण दी उम्मीद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज मध्य प्रदेश विच स्योपुर जिले के कुनो नैशनल पार्क विखे चीता मित्रा अते सेरिया कबीले दे मैंबरां नाल गलबात कीती। पछमी बंगाल सरकार वल्लों अज महंगाई भत्ते विच 20% वाधे दा ऐलान। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी NTA वल्लों UGC नैट जून 2026 की प्रीख्या अज तो शुरू हुई। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत कई सूबों च गरज चमक नाल मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो दो दिन सरकारी दौरे ते मंगोलिया पहुंच गए ने। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच ये जानकारी सांझी की। उन्होंने कहा कि वह भारत ते मंगोलिया दरम्यान विशेष भाईवाली नूं अगे वधाउण लई सुचारू चर्चा की उम्मीद करते हैं। इस दौरे दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया की लीडरशिप नाल मुलाकात करेंगे अते मंगोलिया के विदेश मंत्री बाटमुख बातसेत सेख नाल मुलाकात करेंगे। दौरे के दूजे गेट के विदेश मंत्री बुधवार और वीरवार को दक्षिणी कोरिया की यात्रा करेंगे। इस फेरे दौरान डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून नाल चर्चा करेंगे। वह वीरवार को जेजू विच शांति ते खुशहाली लई जेजू फोरम च मुख भाषण भी देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज मध्य प्रदेश विच स्योपुर जिले के कुनो नैशनल पार्क विखे चिता मित्रा अते सेरिया कबीले के मैंबरां नाल गलबात की। राष्ट्रपति ने प्रोजैक्ट चिता विच उन्हां दे योगदान की शलाघा की ते कहा कि इस प्रोजैक्ट की सफलता च स्थानक भाईचारियां की सरगर्म हिस्सेदारी अहम भूमिका निभा रही है। इस तो पहला राष्ट्रपति कुनो नैशनल पार्क विच सफारी की अते चिता मुड़ वसेबा प्रोजैक्ट की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने चिता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजैक्ट चीता ते लगी प्रदर्शनी भी देखी अते जानवरां दी निगरानी ट्रैकिंग ते साम संभाल लई कीते जा रहे उपरालियां बारे जानकारी लई। प्रोजैक्ट चीता की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 च नामबिया तो लियांदे गए 8 चीतियां नूं कुनो नैशनल पार्क विच छड्डे जाण नाल कीती सी। इस तो बाद दक्षणी अफ्रीका अते बोत्सवाना तो होर चीते लियांदे गए। लगातार साम संभाल ते उपरालियां नाल कुनो विच चीतियां दी आबादी लगातार वध रही है, जो भारत दे जंगली जीव संभाल प्रोग्राम च इक महत्वपूर्ण प्राप्ति है। पछमी बंगाल सरकार ने आज महंगाई भत्ते DA 20% वाधे का ऐलान किया। यह ऐलान राष्ट्रीय वित्त मंत्री स्वपन दास

म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी ते जलंधर ते दोस्तां दे नाल नाल एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी अमृतसर दे दोस्त वी इस टाइम साडे नाल जुड़े होए ने। 1:50 ते 33 सैकेंड हो चुके ने जी, ते जा रही है प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़। और अगला गीत लता ते मोहम्मद रफी जी दी आवाज़ च। स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों दोस्तों प्रोग्राम चल रहा दिल अज शायर है। वैसे दोस्तों तुसी भी सोचते हैं कि जिड़े ना असल च शायर होंगे ना जे वह प्रोग्राम सुनते हो गए। देखो मैं ना शायद उन्हों की वाहवा तो शायद की सुन ही नहीं सकता, उन्हों की वाहवा नहीं सुन सकता होंगे क्योंकि ना कुछ नगमे जो असं पढ़ते ना कुछ शायरियाँ दरियाँ पढ़ते ना जो ना आवाज़ तुरंत जिदा कि मैं कहना ना ओए होए होए असं कह दें होंगे ना तो इदा ही जोड़े शायर है वो असल च वाहवा कहें। दसो मैं जरूर दोस्तों मैसेज करके कि हाँ तुम अगर बहुत ज़्यादा पसंद करते हो किसी शायरी ने तो बारे भी दस सकते हो कि कमाल करती है तो असं उस सरोते नाम भी लोंगे कि ये वाली साढ़े स्रोत्या बहुत पसंद आई है इस नाम की शायरी। वैल प्रोग्राम चल रहा दिला शायर है तो साढ़े स्रोत्या ने सानू अपन पेशकारियां पेश दित्तियां ने। सब तो पहला साढ़े है VPO कंडोला नियर आदमपुर कुलविंदर टेलर रमनीश सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी, बहुत बहुत थोड़ा जी आया साढ़े इस शो दे विच। देखो ना सोशल मीडिया भी कितनी कमाल की चीज़ है, असी एक दूसरे नाल कनैक्ट किवें आराम नाल कर सकते हैं। दोस्तों लो जी लिख रहे ने कि अर्ज किया है, वाह वाह वाह वाह, अभी करना है अर्ज, करने लगे हैं। अर्ज किया है जिसे जान चाहा और इज्जत दी उसे बदनाम थोड़ी ना करेंगे। ओहो क्या बात है जी, जिसे जान चाहा और इज्जत दी उसे बदनाम थोड़ी करेंगे। वो चाहे किसी पर जान लुटाए उसके लिए अपने नुस्कान थोड़ी ना करेंगे, और वो गलत है तो हिसाब के लिए बैठा है ना ऊपर वाला मालिक, और वो गलत है तो हिसाब के लिए बैठा है ना ऊपर वाला मालिक। ये ऐसी है वो वैसी है बोलकर हम अपनी जुबान खराब थोड़ी ना करेंगे। क्या बात है जी, क्या बात है सुनोते हो, क्या बात है, तो कमाल ही करती सर, कमाल ही करती। ये साडे सरोते सी जी VPO कुलविंदर टेलर जी ने सानू भेजी सी, क्या बात है जी। उस तो बाद साडे वन एंड ओनली राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चिल्लिया सुल्तानपुर लोधी तो इन्होंने मैसेज पाया मैंने एक की कह रहे ने, नमस्कार सर, टुडे हैव सीन योर फोटो ऑन सोशल मीडिया, लाजवाब पर्सनैलिटी, गॉड ब्लैस You speak sweet, but name थोड़ा कौड़ा। हाय हाय हाय हाय, अच्छा जी ये तो यार, चलो ये तो कर लो मुझे। अच्छा आई लाइक डिट वैसे अपना राम स्वरूप जी, थैंक यू सो मच, तुसी सानू इस करीब सानू जानिया सानू प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। तुसी की भेजे असी भी देखिए फिर जरा। महफिले गुलजार जी दे शब्द च यह लाइन है, लिख रहे ने कि क्या लाइन लिखी है लिखने वाले ने, क्या लिखा है हमें भी बताइए। जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, सूख गए कुएं तुम्हारे, सूख गए कुएं तुम्हारे, इम्तिहान अभी बाकी।

की है। बरस जाना वक्त पर ए मेघ, बरस जाना वक्त पर ए मेघ, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। क्या बात है सर, क्या बात है जी, क्या बात है। क्लैपिंग होगी, क्लैपिंग। बहुत ही धन्यवाद थोड़ा सर, तुसी हर बार इन्ना कर दियो ते तुसी इस बार ना अज अपने हत्थी लिखी नहीं कुछ भेजे, पर जो भी भेजे है भी बहुत सोहना सी दो सर। उस तो बाद साढ़े एक होर सरोते सत श्री अकाल दिल शायर विच रमनीश कौड़ा जी, बलविंदर सरा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिख रहे ने कि तुम्हारे बाद किसी को दिल में बसाया नहीं हमने। तुम्हारे बाद किसी को दिल में बसाया नहीं हमने, तुम चले गए तो क्या हुआ, तुम चले गए तो क्या हुआ, यादों को कभी मिटाया नहीं हमने। क्या बात है सर, क्या बात है जी, क्या बात है। साढ़े नेक्स्ट सरोते गली अफीम वाली प्रेम मार्केट तो बठिंडे तो अमरजीत जस्सल चूची, चूची सामने ना सानू, सॉरी चूची तो इन्हों की हो ना, अच्छा चूची उर्फ चूची होंगे ना, अमरजीत जस्सल उर्फ चूची है। इन्होंने सानू एक फोटो भेजी है जो कि किसी राइटर की मैनशन नहीं है। दोस्तों सरोत्यो रिक्वेस्ट, अगर तुम सानू बहुत प्यार करते हो ना, राइटर जरूर मैनशन करया करो, तो अगर तुम खुद लिख रहे हो तो वैसे कोई गल ही नहीं, होता फिर कमाल ही है। लिख रहे भेजे इन्होंने कि लोग अपने लभण निकले ने, लोग अपने लभण निकले ने, लोग अपने लभण निकले ने, अपने ही पिछे छड़ गए। ये तो है जी, ये तो है। पता नहीं आप कहते ना रब किड़िया रंगा च राजी, दुनिया किड़िया रंगा च राजी यार। दोस्तों सरोते हो है ना जी, एग्री या मी टू। वेल दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम दिलाज शायर है विद अपने दोस्त आर जे रमनीश दे नाल, ते कमाल ही कर रहे हो सरोते हो, ते बाकी सरोते दी भी वेट आ मैनू कि वो सानू प्यार भरे मैसेजेस भेजन, आई मीन शायरियाँ भेजन, ते थोड़ा आर जे दोस्त रमनीश सुने गए इसनों। ते दोस्तों जरूरी अनाउंसमेंट है कि जेड़े ये प्रोग्राम सिर्फ 2:30 बजे तक चलेगा, उस तो बाद साढ़े दो प्रोग्राम आओगे जो कि एक 2:30 तो 3 जड़ा चलेगा स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग, ते उस तो बाद 3 to 4 प्रोग्राम तुसी सुनोगे रेडियो डॉक्टर, ते थोड़ा जड़ा उस तो बाद फेवरेट प्रोग्राम आना ना वो आना हैलो जलंधर, बहुत ही कमाल दा होने वाला है दोस्तों। तुसी आई होप ता मैं वेट करूँगा थोड़े कॉल्स ही, ते थोड़े मैसेजेस ही, आपा करांगे फन, करांगे मजे करांगे दोस्तों। पर जेड़ा हुण प्रोग्राम चल रहा आपा फिलहाल एदा आनंद मानिए। क्या बात है जी, हुण अगली पेशकारी पेश कर दें हाँ दोस्तों।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है दिल आज शायर है, दिल आज शायर है। जिहड़े शायर लई ना वैसे तो रोज़ दिल आज शायर हुंदा है, इसलिए जिहड़ा प्रोग्राम ना ये रोज़ ही आंदा दिल आज शायर है। राम स्वरूप जी ने ना सानू भेजिया कुछ अपने हत्था ना लिख के, जिवें कि असी गल कीती सी, हमेशा भेजते हुंदे ने, ते अज उन्होंने भेजा है, लिखा है जिंदगी। अच्छा, जिंदगी बारे लिखा। वैल दोस्तों, कमाल है सरोत वैसे राम स्वरूप जी लिख रहे ने कि जिंदगी हमने तेरे नाज उठाए ना जाए। अच्छा जी, जिंदगी हमने तेरे नाज उठाए ना जाए, सांस लेने की एक रस्म ही अदा करते रहे। देखो जी दोस्तों, ये गल जिन्हों समझ आई हो तो कमाल ही हो गया। वैल दस दस सरोते हो, बड़ी कमाल की चीज़ दसन लगा। देखो जी, जे समझ लो ना, थानू कुछ लाइना समझ नहीं आईया या मतलब सुनन च तो दिक्कत नहीं होगी, पर हाँ जे समझ नहीं ना आईया तो समझ लियो उस सरोते ने ना बहुत वड्डी गल करती आ। हाँ जी, हाँ जी, सच है। उस तो बाद साढ़े होर प्यारे सरोते FM दिल आज शायर है RJ रमनी।

0: सर जी, वेरी गुड आफ्टरनून। कुछ नहीं चाहिए, लिख रहे नेहा, कुछ नहीं चाहिए, तेरी एक मुस्कान काफी है। हाय हाय, मैं तो होनी मुस्कान आगे जी। कुछ नहीं चाहिए, तेरी एक मुस्कान काफी है, तुम मेरे दिल में बसे रहो, ये अरमान ही काफी है। हम ये नहीं कहते कि तुम मेरे पास चले आओ, हम ये नहीं कहते कि तुम मेरे पास चले आओ, बस हमें याद रखना, तुम्हारा ये एहसान ही काफी है। थैंक यू किरण अरोड़ा जी। आई नो, ये लिखिया भी बहुत सोना है, एंड अगर तुसी इसनों मेरे लिए भेजे है ना, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद किरण अरोड़ा जी, ग्रीन पार्क कपूरथला तो, जिन्होंने सानू भेजा है। थैंक यू किरण जी, थैंक यू सो मच। साढ़े सरोते ने भी क्या है, साढ़े कुलविंदर टेली जी प्यार परी सानू मैसेज भेज रहे ने, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा कुलविंदर जी। उस तो बाद साढ़े अगले सरोते मेन बाजार पिंड चौके जिला बठिंडा, बसंत सिंह टेलर बेटा लवदीप सिंह जस्सल, ठीक है जी, की लिख रहे ने जी। इन्होंने काफी वड्डा लिखिया, पर ध्यान ना सुनियो सरोते हो। दूर होण नूं ना दिल किसे दा वी करदा, दूर होण नूं ना दिल किसे दा वी करदा, दूर पर फिर भी होना पै जांदा है। बिना मिले एक दिन लंघदा ना जिस बिना, जिंदगी पर उस बिना जिउणा पै जांदा है। एनू वक्त दी मार आखो जां खेड नसीबा दी, एनू वक्त दी मार आखो जां खेड नसीबा दी, अपने प्यारे नूं खोणा पै जांदा है। हीरियां तो वध कीमती जो यार हुंदे, समें नाल उन्हां नूं गवाउणा पै जांदा है। हीरियां तो वध कीमती जो यार हुंदे, समें नाल उन्हां नूं गवाउणा पै जांदा है। दुनिया अगे तां गल्लां हस हस करिए, दुनिया अगे तां गल्लां हस हस करिए, कल्ले बैठ के रातां नूं वी रोणा पै जांदा है। आखिर लाइन बोल रहा, दुख सुख जिंदगी दा हिस्सा हुंदा जसल, दुख सुख जिंदगी दा हिस्सा हुंदा जसल, हस हस हड्डां ते हंडौणा पै जांदा है। क्या बात है जी जसल साहब, क्या बात है जी। आई साडे सरोते ने ना लिखी है कमाल दी, साडे हमेशा ए अपने जसल साहब, बसंत सिंह टेलर जी बेटा लवदीप सिंह जसल, ये हमेशा सानू कुछ ना कुछ वधिया वधिया चीज़ा भेजते रहेंगे, तो कमाल ही करते हैं, तो बनने से भी बहुत मज़ा आता है दोस्तों। वैल दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है दिल आज शायर है, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीस, तो बस कुछ ही समा दा वेला रह चुका है, पर आप इस प्रोग्राम नूं अगे वधाउण लई एक आखिरी पेशकारी जरूर सुनांगे दोस्तों।
1: याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए

हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था, हमारा अंतिम प्रश्न था डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है। तो इसका उत्तर है डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओ ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया।

0: वो भूखा था और घायल भी।
1: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
0: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
1: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
0: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
1: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।

0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का अंक फैटी लिवर पर आधारित है। आज हम जानेंगे फैटी लिवर को और साथ ही फूड सेफ्टी और फूड एडल्टरेशन पर भी बात होगी हमारे जो आज की रेडियो डॉक्टर है उनसे। हम खाने की मिलावट और खाने की मिलावट से होने वाले हमारे शरीर में नुकसान, साथ ही साथ फैटी लिवर पर इसका क्या असर पड़ता है, ये सारी बातचीत करेंगे। हमारी रेडियो डॉक्टर हैं आज की डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजी डॉक्टर RML हॉस्पिटल। स्वागत है डॉक्टर साहब आकाशवाणी के स्टूडियो में।
2: नमस्कार एंड धन्यवाद शालिनी जी। मुझे भी बड़ी खुशी होगी इस बारे में बात करके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और खान पान तो हमारे देश की तहजीब है तो उससे रिलेटेड है।
1: बिल्कुल, और फैटी लिवर की जब हम बात करते हैं, लिवर एक ऐसा अंग है मैडम हमारे शरीर का जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे आपने कहा खान पान एक तरह से धुरी है ये हमारे जीवन की और शरीर की भी। क्या हम खाते हैं उसी से ही हमारा शरीर बनता है, तो बहुत जरूरी होता है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या खाना है ये सोचना, कितना खाना है, ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, जो आजकल हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो इसकी अवेयरनेस की भी जरूरत है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, वो भी इस चीज को समझे। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम उनको भी ये बात समझाएं कि किस तरह से हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। लिवर क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो आप पूरी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। और फैटी लिवर जो पहले हम कभी कभार सुनते थे, फैटी लिवर जैसा शब्द वो इतना कॉमन अब आजकल होने लगा है, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि पहले तो ये कि फैटी लिवर होता क्या है और ये आजकल क्यों बढ़ रहा है।
2: देखिए, फैटी लिवर यानी हमारा यकृत और फैट मतलब वसा, तो जब फैट जो होता है वो जरूरत से ज्यादा हम खाने लग जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे डायबिटीज और मोटापा साथ में होना और हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होना, इन सब के साथ क्या होता है कि जो लिवर का मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है और जो फैट है वो हमारे लिवर पे जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसे हम फैटी लिवर कहते हैं। और इसका जो प्रेवलेंस और इंसिडेंस है ये काफी बढ़ गया है आने हुए सालों में। और ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी खान पान की शैली है, जो हमारी जीवन की शैली है, उसमें बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ गया है, तो उस कारण से फैटी लिवर जो है वो काफी
1: सुनने में
2: आ रहा है।
1: तो ये क्या बदलाव है और ये बदलाव हमारे लिए कितने हानिकारक हैं और अब हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं, ये सारी चीजें, ये

डिस्कशन हम आज करेंगे, तो हम आगे बढ़े उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं। रेडियो डॉक्टर को जारी रखेंगे हमारा जो आज का विषय है फैटी लिवर पर।

0: दिल बहलता है आपके आ जाने से, और जब आप इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है आप हमें लिखकर बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। डॉक्टर साहब, आज जो हमारे श्रोता हैं बहुत सारे अभी तक सवाल अभी से ही भेज चुके हैं, कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ है तो लगता है बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं फैटी लिवर से संबंधित। तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेती हूँ। हमें लिखा है अनमोल ने सरिता बिहार से कि कैसे पता चलता है कि फैटी लिवर हो गया है, ये बताएं।
1: देखिए अनमोल जी और बाकी श्रोतागण भी, नॉर्मल जो हमारा लिवर होता है उसमें थोड़ा बहुत फैट तो एक्यूमुलेट होता है, वो नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब लिवर के वेट का 5-10% सिर्फ फैट हो जाता है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर एक डिसीज होती है, इसके कई स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इनिशियल जो होता है, जो सिंपल चीज होती है, जब सिंपल फैट एक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो वो होता है फैटी लिवर। उसके बाद जब फैट इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लिवर के सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तो स्टियोहेपेटाइटिस हो जाती है, उसे हम कहते हैं नैश या मैश। और आगे चल के जब ये इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर ही डैमेज हो जाता है तो वो होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो शुरुआत हमेशा फैटी लिवर से होती है। नॉर्मली हमें या तो जब लिवर में फैट जमा हो जाता है तो उसका साइज बड़ा होने लग जाता है और हमें जहां लिवर होता है राइट साइड में वहां पर हमें खिंचाव या हल्का हल्का दर्द महसूस होने लग जाता है। तो नॉर्मली फिर सब हम नॉर्मल होता है आजकल की अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें लिखा हुआ आता है फैटी लिवर। तो जरूरी नहीं है कि वो देख के हम डर जाएं। फैटी लिवर जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं काफी कॉमन है और प्रिवेंटेबल भी है एक बार अगर पता चल जाए तो। लेकिन जैसे ही अगर आपको पता चलता है फैटी लिवर है और उसके साथ फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसमें कुछ टेस्ट आते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि भाई फैटी लिवर है और अब आपको सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर साथ में आपको मधुमेह है, शुगर की बीमारी है, आपको मोटापे से आप ग्रसित हैं और बीपी की बीमारी है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें कई बीमारियां साथ में आती हैं और फिर फैटी लिवर आता है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, उस समय आपको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है।
0: जी, तो बहुत सारी बातें आपने, बहुत सारे सवालों का जवाब आपने इसमें दिया, क्योंकि हमने अभी कॉज पे बात की थी पर आपने सिम्टम भी बताया।
1: जी जी,
0: तो इसमें क्या दर्द भी होता है जैसे खिंचाव के साथ?
1: देखिए जो हमारा लिवर होता है ना वो एक कैप्सूल के अंदर रहता है, एक खोल होता है, भगवान ने आप एक प्रोटेक्टिव लेयर देके हम सबको भेजा है लिवर के आसपास। तो जो वो जब नॉर्मल लिवर रहता है, फैट उसमें नॉर्मल मात्रा में रहता है तो वो खिंचाव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे फैटी लिवर बढ़ता जाता है, जैसे कि मैंने बताया 5-10% लिवर के वेट से ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो

0: लिवर का जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और आपको दर्द या एक हल्की सी चुभन या ऐसा महसूस होता है जहां पर लिवर है, राइट साइड में. आगे इसके लक्षण क्या होते हैं कि फिर जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपकी जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं उसमें एबनॉर्मैलिटी आनी शुरू हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल वाले टेस्ट होते हैं उनमें एबनॉर्मैलिटी आनी शुरू हो जाती है, तो फिर ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज बनना शुरू हो जाता है. फिर हम देखते हैं कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, कहीं आपको बीपी की दवाई या दिल की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें फैटी लिवर के साथ होती है तो थोड़ा ज्यादा होता है.
1: अच्छा
0: फिर हम
1: अच्छा
0: आपका वेट देखते हैं कि आपका वेट नॉर्मल है या आप ओबीस हैं या ऐसा है कि आपका शरीर मोटापे की तरफ बढ़ रहा है. तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं देखने के लिए कि अगर अकेला फैटी लिवर है या उसके साथ और भी जो लक्षण होते हैं वो है या नहीं है.
1: जी. तो अगर इस तरह का कुछ लगता है तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो जो टेस्ट डॉक्टर लिखे
0: जी
1: वो सब कराने बहुत
0: जी
1: आवश्यक
0: जी
1: है.
0: जी जो भी आपके निकटतम डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, वो आपको असेस करेंगे, आपको टेस्ट बताएंगे और फिर उन सारी चीजों को, आपके जो लक्षण हो रहे हैं उनके साथ आपके टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सबको मिला के देख के फिर आपका डायग्नोसिस बनाएंगे कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं.
1: जी. तो डॉक्टर साहब, अभी अपने

0: कहीं आपको बीपी की दवाई या दिल की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें फैटी लिवर के साथ होती है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है.
1: अच्छा
0: फिर हम
1: अच्छा
0: आपका वेट देखते हैं कि आपका वेट नॉर्मल है या आप ओबीस हैं या ऐसा है कि आपका शरीर मोटापे की तरफ बढ़ रहा है. तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं देखने के लिए कि अगर अकेला फैटी लिवर है या उसके साथ और भी जो लक्षण होते हैं वो है या नहीं है.
1: जी, तो अगर इस तरह का कुछ लगता है तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो जो टेस्ट डॉक्टर लिखें
0: जी
1: वो सब कराने बहुत
0: जी
1: आवश्यक
0: जी
1: है.
0: जी
1: जी
0: जो भी आपके निकटतम डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, वो आपको असेस करेंगे, आपको टेस्ट बताएंगे और फिर उन सारी चीजों को, आपके जो लक्षण हो रहे हैं उनके साथ आपके टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सबको मिला के देख के फिर आपका डायग्नोसिस बनाएंगे कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं.
1: जी, तो डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि वेट भी इसमें
0: जी
1: काफी
0: जी
1: मैटर
0: जी
1: करता है, कि
0: जी
1: ओवर वेट तो नहीं है.
0: जी
1: तो ऐसा ही एक प्रश्न हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है. जतिन मल्होत्रा हैं और ये रहते हैं गीता कॉलोनी में, दिल्ली में. लिख रहे हैं कि मेरा फैट बहुत बढ़ गया है और मुझे भूख बहुत लगती है, तो बताएं नॉर्मल वेट होना कितना चाहिए?
0: देखिए वो तो एज के हिसाब से स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई इस एज में पर्टिकुलर बीएमआई होता है कि हमारा बेसल वो उसके हिसाब से होता है. तो ऐसे रेडियो पे तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती,
1: जी
0: लेकिन आपकी हाइट और आपके वेट और आपके एज के हिसाब से होता है. और अगर आपकी जो चर्बी है वो पेट पर है ज्यादा, जो एब्डोमिनल ओबिसिटी होती है वो रिस्क फैटी लिवर के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ होता है.
1: अच्छा
0: एब्डोमिनल ओबिसिटी जो होती है, जो पेट पे जो खासकर मोटापा होता है, वो फैटी लिवर, शुगर और दिल की बीमारियों के साथ ज्यादा कोरिलेट होता है.
1: अच्छा इन्होंने
0: तो
1: एज लिखकर भेज दी है मैडम.
0: अच्छा,
1: अभी लिखा है कि मैं 27 ईयर्स का हूँ.
0: जी जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी तो
1: तो
0: 27 ईयर्स के हैं और अगर 5 फुट, 5.5 या 6 फुट के कहीं बीच में है तो इनका वजन कहीं 70 से 72 किलो के बीच में होना चाहिए, वो इनका नॉर्मल वेट है.
1: ठीक है
0: ऐसे रेडियो पे बताना बड़ा
1: जी,
0: मुश्किल
1: बिल्कुल आपने
0: है,
1: बताया,
0: ये
1: कई सारी चीजें
0: बहुत सारी
1: देखनी
0: चीजें
1: पड़ती हैं.
0: देखनी पड़ती
1: हाँ
0: हैं. पर
1: हाँ
0: अगर इन्हें लग रहा है कि मेरा फैट बढ़ गया
1: हाइट
0: है,
1: भी
0: हाँ
1: देखना
0: हाइट भी देखनी पड़ेगी, सर्कमफ्रेंस देखना
1: पड़ेगा.
0: पड़ेगा,
1: जी
0: पेट नाप के ना जो मेजरमेंट्स हैं वो लेने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. लेकिन अगर आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि मेरा फैट बढ़ता जा
1: हाँ
0: रहा है तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि
1: हाँ ये
0: आप उस पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि ये चीज बेस्ट चीज ये ऐसी है कि एक बार आप अगर ध्यान देना शुरू करेंगे तो ये रिवर्सिबल है शुरू में,
1: अच्छा
0: मतलब ये ठीक हो जा सकती है. ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपको फैटी लिवर हो गया तो वो नहीं ठीक होगा. इनिशियल जो स्टेजेस होती है फैटी लिवर, स्टीव हेपेटाइटिस, दे आर रिवर्सिबल एंड दे कैन बी रिवर्टेड बैक.
1: अच्छा
0: आप
1: अच्छा
0: नॉर्मल लिवर अपना दोबारा पा सकते हैं अगर
1: जी
0: आप सही समय पर लक्षण पहचान लें और ध्यान रखना शुरू कर दें तो.
1: जी तो ये भी हम जानेंगे आपसे कि कैसे इसको रिवर्स किया जा सकता है. हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है, इनसे प्रश्न पूछ लेते हैं इनका. हेलो,
2: रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार.
1: नमस्कार जी.
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम.
0: नमस्कार जी, नमस्कार जी.
2: जो लोग ज्यादा नॉन वेज खाते हैं उनका लीवर जल्दी फैटी होता है. नंबर टू, जो हम सील्ड पैक्ड जिसको कहते हैं पैक्ड प्रोडक्ट लेते हैं
0: प्रोसेस्ड फूड,
2: उनकी,
0: प्रोसेस्ड फूड चड्डा जी उसको हम कहते हैं,
2: हाँ
0: प्रोसेस्ड
2: जी,
0: फूड जो हाईली प्रोसेस्ड
2: हाँ
0: होता
2: जी,
0: है.
2: तो उसको उसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है, 1 साल से
0: जी
2: लेकर 2 साल तक.
0: जी जी
2: तो वो खाने से भी लीवर फैटी हो सकता है, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा.
0: देखिए चड्डा जी, देखिए कुछ भी चीज है ना, या हम अकेले नॉनवेज की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये जीवन शैली है, हर हर आदमी का एक अपना खान पान है. तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला खान पान गलत है और ये वाला सही है. कोई भी चीज जब भी हम एबनॉर्मल मात्रा में करेंगे तो वो हमें नुकसान देगी. उसमें ज्यादा घी तेल भी आ गए, उसमें ज्यादा मिठाइयां भी आ गई, उसमें ज्यादा तले हुए पदार्थ भी आ गए, उसमें ज्यादा नॉन वेजिटेरियन भी चीजें, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही जो अनहेल्दी हैं अगर वो हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो फैटी लिवर हो सकता है. तो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये जो आजकल प्रोसेस फूड का चलन चल गया है कि जो आप पैकेट खरीदें और वो 1-1.5 साल तक ठीक रहेगा, और इंस्टेंट फूड जो है, ये जो फूड है ये बहुत प्रोसेस्ड होते हैं, इनसे फैटी लिवर होने का बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है. फैटी लिवर ही नहीं और भी जो बीमारियां हैं वो इनसे ज्यादा हो सकती है क्योंकि इनका चलन आजकल ज्यादा ही चल गया है. और इनकी
1: जी
0: शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें केमिकल्स वगैरह डालने पड़ते हैं जिससे कि जो इनकी नॉर्मल और अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खराब हो जाती है.
1: एक तो प्रोसेस भी हो गया, और कई बार
0: जी
1: ऐसा भी देखने में आता है कि सब स्टैंडर्ड
0: जी
1: माल भी कई बार मिलता है, जिसको हम एडल्टरेटेड कहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उससे भी काफी
0: क्योंकि
1: समस्याएं बढ़
0: खपत
1: रही.
0: ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है देश की, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए कई
1: जी
0: बार सब स्टैंडर्ड चीजें होती हैं उनमें मिलावट हो जाती है, पता नहीं चलता. आए दिन हम रेडियो और टीवी पे सुनते रहते हैं कि भाई फलाना चीज में ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया. तो वो भी चीजें, वो केमिकल्स होते हैं वो मिलाए जाते हैं और वो सब स्टैंडर्ड होते हैं, और हर जो चीज हम खाते हैं वो मेटाबोलाइज

0: में ही होती है जाके,
1: जी
0: तो वो लिवर को नुकसान पहुंचाती है।
1: इसमें डॉक्टर साहब कई चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है
0: जी,
1: है
0: मतलब
1: ना।
0: इनका तो हम कुछ
1: हाँ,
0: कर नहीं सकते।
1: जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है या स्प्रेज हो रहे हैं वो किस तरह से, तो हम ये कर सकते हैं कि हम अच्छे से धो के खाएं, जो
0: जी
1: भी
0: जी
1: कच्चा खा रहे हैं,
0: जी
1: फ्रूट्स खा
0: और
1: रहे हैं।
0: कोशिश करें कि ताजी चीजें खाएं, पैकेट बंद चीजें अवॉइड करें
1: अवॉइड
0: खाना
1: करें
0: जितना हो सके। जैसे
1: जी।
0: कि हमारे पूर्वज थे, वो साथ के साथ बनाते थे, साथ के साथ खाते थे, रखने का चलन कोई नहीं था कि एक समय का खाना दो तीन
1: बिल्कुल
0: दिन तक चलता रहेगा।
1: जी।
0: और यहाँ तो हम प्रोसेस फूड की बात करें, जो पैकेट साल भर चलने की बात करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ताजा बनाएं, साथ के साथ खाएं और प्रोसेस फूड अवॉइड करें।
1: जी जी बिल्कुल सही बात। और हमारे ये एक श्रोता हैं तपोष प्रमाणिक, बोंगा वेस्ट बंगाल से हमें लिखकर भेज रहे हैं, आर चिल्ड्रेन मोर एट रिस्क ऑफ फैटी लिवर। तो मुझे लगता है कहीं से ये जुड़ता है क्योंकि
0: जी
1: बच्चे
0: जी
1: प्रोसेस फूड बहुत खा रहे हैं आजकल।
0: पोस्ट कोविड जो है चाइल्डहुड ओबिसिटी काफी बढ़ गई है। मतलब मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूं, तो मैं एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो नहीं बता सकती, लेकिन प्रोसेस फूड का चलन तो चल ही रहा है। और जो बच्चे होते हैं उन्हें ये घर की बनी हुई सब्जियां और जो हेल्दी चीजें होती हैं वो नहीं पसंद आती उन्हें। पैकेट वाली चीजें, प्रोसेस फूड, फैटी फूड, ये सब चीजें बहुत
1: कुछ एडिटिव्स
0: प्रमोट
1: भी
0: भी
1: डाले
0: होती
1: जाते
0: हैं
1: हैं क्या
0: हमें एज अ पेरेंट, तो
1: उसमें
0: मुझे लगता है, बट एज अ डॉक्टर तो मैं भी नहीं कह
1: हाँ
0: सकती
1: जी जी
0: कि कुछ है या नहीं है। बट हाँ, हमारे बच्चे जो हैं वो भी, हमें भी लगता है कि हाँ इजी चीज है, एक पैकेट पकड़ा दो इंस्टेड ऑफ कि हम जाके ताजा बनाएं। वो भी एक है, क्योंकि सब
1: कारण।
0: बिजी हैं, सबकी
1: हाँ
0: लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है और समय ही नहीं है किसी के पास, तो जो इजी ऑप्शन है वो पैकेट्स ही होते हैं। बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, या तो मौसम खराब है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है, या फिर कभी बारिश आ रही है, तो जो पहले जैसे बच्चे पूरे दिन खेला करते थे,
1: फिजिकल
0: फिजिकल
1: एक्टिविटी
0: एक्टिविटी जो पहले
1: जी जी
0: ज्यादा होती थी वो अब बिल्कुल जीरो या निल रह गई है। और जो फूड है वो प्रोसेस्ड और रिच ज्यादा होता जा रहा है। तो हर चीज बराबर होती है ना, कि जितना हम खाएं उतना हम पचाने के लिए एक्सरसाइज तो करें, तो बैलेंस बना रहता है। जहां पे पाचन करने के लिए हम एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे और कैलोरीज और एनर्जी कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो वो फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है।
1: जी।
0: ये है
1: तो बहुत सारी डॉक्टर साहब ने बात बताई है कि फिजिकल एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है। तो हम इन सारी बातों पर अभी इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद करेंगे बातें। आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, हम उनको भी लेंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज की रेडियो डॉक्टर डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। और आज हम उनसे बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में और साथ ही फूड सेफ्टी एंड एडल्टरेशन, खाने में होने वाली मिलावट और उसके नुकसान के बारे में भी डॉक्टर साहब बहुत कुछ बता रही हैं। तो एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो।
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून।
2: और डॉक्टर साहिबा को भी मेरा गुड आफ्टरनून।
3: जी गुड आफ्टरनून।
2: मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे महिलाएं घर के काम में ज्यादा लगी रहती हैं, तो मेरे जैसी जो 45 प्लस महिलाएं हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है और मैम उनको किन किन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए पर्टिकुलर इस एज में आने के बाद, ताकि हम इस समस्या से दूर रह सके।
3: जैसा कि आपने कहा कि घर का काम इम्पोर्टेंट है, तो जितनी इम्पोर्टेंस आप घर के काम को दे रहे हो ना कि भाई नाश्ता लंच डिनर बनाना है, उतनी इम्पोर्टेंस आपको एक्सरसाइज को देनी है कि एक्सरसाइज भी रोज करनी ही करनी है। अगर आप ये मान के चलेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। और आपको ही नहीं, हर एज की फीमेल्स या मेल्स को बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी है। एक तो हमें अपना जो बॉडी वेट है वो आइडियल रखना है, यानी मेल्स में जो वेस्ट सर्कमफेरेंस होती है वो 102 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए और फीमेल्स में 88 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका वेट सर्कमफेरेंस। अगर आपका वेट सर्कमफेरेंस इन नंबरों से ऊपर है मेल्स और फीमेल्स में, तो आप थोड़े हाई रिस्क की तरफ जा रहे हैं मोटापे के, और वो आपको लीड करेगा फैटी लिवर, डायबिटीज़ ऐसी बीमारियों की तरफ। फिर खान पान का बहुत ध्यान रखें, ताज़ा खाना बना के खाएं, अपने खाने में फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स और प्रोसेस फूड कम से कम रखें, ताज़ा खाना बनाएं, सब्जियां और फल ज़्यादा मात्रा में लें, एक्सरसाइज करें, खूब सारा पानी पिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें। किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है, योगा हो गया, वॉकिंग हो गई या जिम अगर आप जाते हैं, तो वो उसको अपनी लाइफस्टाइल का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बना लें जितना कि आपकी रोजमर्रा का जो घर का काम या ऑफिस का काम है वो रूटीन है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। उम्मीद है कि आपको सही और सटीक जवाब जो डॉक्टर साहब ने दिया और आप जैसे और बहुत सारे जो हमारे श्रोता है जो जिनका यह प्रश्न था उनको भी मिल गया। लेकिन हमारे एक श्रोता है डॉक्टर साहब मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से, वो थोड़ा सा अलग व्यू रखते हैं
3: जी,
1: वो ये लिख रहे हैं कि फास्ट फूड और तरह तरह का नशा ये हमारे लिवर के लिए किस तरह से असर डालता है, ये तो एक क्वेश्चन है। पर इन्होंने लिखा है आगे कि आजकल घरों में महिला हो या पुरुष या बच्चे, कोई अपना काम करना नहीं चाहता, करता ही नहीं है, घर में नौकर लगा के रखा है, काम वाली लगी हुई है, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसका हमारे शरीर पे हमारे लिवर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है ये मैं जानना चाहता हूँ। और आपको और डॉक्टर साहिबा को नमस्कार।
3: नमस्कार जी। एक तो जो आपने बात कही नशे की, तो वो दो हम फैटी लिवर पे बात कर रहे हैं, ये जो है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इन पर्टिकुलर पे हम बातें कर रहे हैं, लेकिन लिवर जो है वो अल्कोहल से भी खराब हो जाता है और ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इस आज के प्रोग्राम के उससे बाहर है। लेकिन हर तरह का नशा हमारे शरीर को नुकसान दे सकता है, ये हमें स्मोकिंग अल्कोहल ये तो सबको पता ही है। और जहाँ तक कि आपने बात की कि काम कम कर रहे हैं, देखिए आजकल जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा बदल गया है, फीमेल्स भी काम करने लगी हैं, मेल्स भी काम करने लगे हैं, और किसी ना किसी तरह हाउस हेल्प की जरूरत तो हमें पड़ती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारा काम हम उन पर ही छोड़ देते हैं, बहुत सारा काम हम खुद भी करते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल पर से अगर आप अपनी लाइफ में एक्टिविटी नहीं करते हैं वो एक रिस्क फैक्टर है, ना कि सिर्फ फैटी लिवर के लिए बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए, जैसे शुगर डायबिटीज हो गई, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई। तो फिजिकल एक्टिविटी तो हमें जितनी भी हो सके, बचपन से ही बच्चों में भी आदत डालनी चाहिए और जो भी घर के सदस्य हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी वो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाकर रखें। काम तो कोई भी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी ही होगी।
1: हमारे साथ एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो।
4: हेलो नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार मैडम जी। शालिनी मित्तल जी, जी, जी संजीव कुमार हूँ जी मैं गाँव।
1: जी संजीव जी अपना प्रश्न
4: जी। मैं प्रश्न ही है मैडम जी, अल्ट्रासाउंड में ना उसका कई साल पहले फैटी लीवर आया था जी। और उसकी वो यहाँ से पटना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या करनाल में दवाइयाँ भी लिखी, दवाई का नाम तो मेरा याद नहीं है, पर उससे कोई खास आराम नहीं है, देखने में कमजोर है और परफॉर्मेंस उसकी स्टडीज में बिल्कुल वीक है। पहले 6 साल मैंने बीएससी पास कर सके और अब भी, तो अब उसको क्या करना चाहिए मैडम? सर्दी में नहाता नहीं है कहीं कहीं महीने, जैसे कि अक्टूबर में रुकेगा नहाना, फिर अप्रैल

0: साल के बाद ही ना आएगा। और
1: हम्म,
0: जी यानी वीक वीक है बिल्कुल, कई बार अगर जाता है सिज़ोफ्रेनिया भी है उसको और एपिलेप्सी भी है जी।
1: हाँ, देखिए मैं भी यही कहने वाली थी कि ये सिर्फ एक शारीरिक बीमारी के लक्षण नहीं है, ये मानसिक बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं, तो उन्हें ज़रूरत है कंप्लीट मानसिक इवैल्यूएशन की। जो भी आपके पास डॉक्टर हैं उनसे या किसी भी मनोचिकित्सक से आप उनको दिखाएं और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और फिर दोनों तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर चलेंगी। कई बार क्या होता है कि जो दवाइयां उनको अपनी मानसिक दवाइयों के कारण चल रही हैं उनसे भी फैटी लिवर हो जाता है, कुछ दवाइयों से होता है। तो आपको उनके बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत लग रही है जैसा कि आप बता रहे हैं उनके कारण।
0: काउंसलिंग तो मैडम बहुत करते हैं, बरनाल
1: जी
0: वाले जो नहीं, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल
1: जी
0: कॉलेज
1: जी
0: वाले
1: जी
0: काफी बार करते हैं काउंसलिंग तो,
1: जी
0: पर
1: जी
0: ये मानता नहीं देते
1: वो
0: सवाल ये
1: आपको ना
0: है।
1: रेगुलर करवानी पड़ेगी ये, क्योंकि बिहेवियरल चेंजेस होते हैं ये, रोज रोज रोज रोज स्ट्रेस करना पड़ेगा आप लोगों को भी, और काउंसलिंग और दवाइयाँ, जब दोनों तीनों चीजें इकट्ठे होंगी तो ही फर्क पड़ेगा। जी
2: धन्यवाद
1: बहुत
2: संजीव
1: बहुत
2: जी, और
1: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि उनको इवैल्यूएशन की जरूरत है, आप उसको फॉलो अप करें। और हमारे पास दिनेश शर्मा जी ने डॉक्टर साहब लिखकर भेजा है शिमला झुंझुनू राजस्थान से, कि फैटी लिवर को पता करने के लिए कौन कौन सी जांचें की जाती हैं और इसका उपचार और बचाव, वो सारी चीजें पूछी।
1: जी
2: तो हम
1: जी
2: बात तो कर ही रहे हैं, इसका
1: जी
2: कोई टेस्ट भी होता है जो अलग
1: जी
2: से किया
1: शुरू
2: जाता
1: में
2: है?
1: तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है एक, और अल्ट्रासाउंड के साथ कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट जिसे हम LFT कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल देखे जाते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल किया जाता है देखने के लिए कि आपको मधुमेह तो नहीं है। तो इनिशियली ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन नाम का एक टेस्ट होता है जो बड़े अस्पतालों में और बड़ी जगहों पर उपलब्ध होता है, वो टेस्ट कराना होता है देखने के लिए। उसमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ वैल्यू होती है जो देखी जाती है, अगर आप उस वैल्यू के ऊपर आते हैं तो फिर रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से असेस किया जाता है, और आपको जो भी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं जो आपको उस समय से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी बढ़ानी है, खाने में क्या खाना है, कितनी आपकी न्यूट्रिशनल कैलोरीज अलाउड है, वो सब आपको डिटेल फिर उसमें बताया जाता है।
2: डॉक्टर साहब, हमारी श्रोता है परिधि, दिल्ली में रहती हैं, लिख रही हैं, माय हस्बैंड हैज ग्रेड टू फैटी लिवर
1: जी
2: एंड ही इज 30 इयर्स ओल्ड।
1: जी
2: तो ये
1: जी
2: कितना डेंजरस है बिकॉज ही इज सो यंग, और हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? कैन इट बी रिवर्स्ड बाय लूजिंग वेट और वी हैव टू टेक सम एडिशनल मेजर्स?
1: देखिए परिधि जी, इनिशियली तो वेट लॉस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो एक बहुत ब्रॉड टर्म होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें एक तो आता है कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो मैंने आपको, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुटेबल होता है वो आप शुरू करें। दूसरा होता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज, लाइफ स्टाइल मतलब बदल रहे हैं हम, हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स, हम कितने बजे खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, क्यों कौन सा हम ऑयल यूज करते हैं, क्या हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, क्या हम नहीं खा रहे, कितनी देर हम बैठे रहते हैं पूरे दिन में, कि हम किस तरह का हमारा वर्क है, किस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, तो वो सब हमें चेंज करना होता है। इनिशियल हमेशा लाइफस्टाइल चेंज और मॉडिफिकेशन जो है दैट गोज लॉन्ग वे इन ट्रीटिंग यू। अगर उसके बाद नहीं आराम होता तो फिर बाकी चीज़ें दी जाती हैं कि दवाइयाँ हैं जो उपलब्ध हैं जो दी जाती हैं, और कंप्लीट असेसमेंट आपके हस्बैंड को ज़रूरत है। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आने से अकेले से वी डोंट हैव टू पैनिक। जैसा कि मैंने अभी बताया था, वेट सर्कमफ्रेंस, BMI, LFT, शुगर, वो सारे एक बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जो करने पड़ते हैं इवेल्युएट करके, उसके बाद हम बता सकते हैं आपको कि रिस्क कितना है। लेकिन अगर आ रहा है फैटी लिवर तो आई थिंक आप लोगों को एक्सरसाइज और डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो अपने आप ही शुरू कर देनी
2: करनी
1: चाहिए।
2: चाहिए।
1: जी जी
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बात समझ में आई कि क्या ये अलग अलग ग्रेड का भी होता है, जैसे इन्होंने ग्रेड टू लिखा है?
1: देखिए वो तो रेडियोलॉजिकल वो होते हैं, उसमें ग्रेड दिया जाता है,
2: अच्छा।
1: जैसा कि मैंने बताया फाइब्रोस्कैन है उसमें भी हम असेस करते हैं ग्रेड, उसमें भी ग्रेड होते हैं, बट वो हाँ नॉर्मल आदमियों के लिए नहीं होते, वो डॉक्टर्स के लिए होते हैं, डॉक्टर्स उसे देखेंगे भाई कौन सा ग्रेड है,
2: अच्छा
1: उसमें रिस्क कितना होता है, वो हम असेस करके फिर हम आपको बताते हैं कि भाई आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए।
2: जी। संजय हमें लिखकर भेज रहे हैं बिहार से, इन्होंने लिखा है कि मेरे पेट में दर्द है 1 साल से, कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, तो क्या ये कहीं से फैटी लिवर का कोई सिम्टम माना जा सकता है?
1: देखिए नॉन स्पेसिफिक पेन कभी ऊपर कभी नीचे तो फैटी लिवर का सिम्टम नहीं होता, मतलब जैसा कि हम बता रहे हैं ठीक है अवेयरनेस है, लेकिन इतना डर भी अपने मन में पैदा नहीं करना चाहिए कि भाई दर्द इधर उधर जो है वो कुड बी अ नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन, नॉट नेसेसरी फैटी लिवर।
2: जी। ओम प्रकाश जी हैं, 83 इयर्स के हैं, दिल्ली में रहते हैं, गॉल ब्लैडर की पथरी क्या फैटी लिवर के कारण हो सकती है, और कितनी बड़ी पथरी के बाद ऑपरेशन कराना चाहिए, ये इनके दो प्रश्न हैं। तो क्या फैटी लिवर पथरी
1: देखिए
2: को प्रमोट
1: सर,
2: करता है?
1: हाँ ये मैं बता सकती हूँ कि पथरी को प्रमोट करने के बहुत सारे

0: कारण होते हैं और फैटी लिवर उन कारणों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ होता है। अब कितनी बड़ी फैल पथरी होनी चाहिए ये तो इस प्रोग्राम के स्कोप से बाहर है, तो वो
1: जी
0: मैं रेडियो पे नहीं बता सकती हूँ। आप किसी भी अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाए और उनसे बात करें कि क्या करना है गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए।
1: जी जी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं
0: जी
1: व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो
2: हेलो।
1: जी,
2: हाँ जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
2: हाँ जी मैम मेरठ से बोल रही हूँ, मेरा नाम बबीता है।
1: जी।
2: मैम
1: बबीता जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न कर लें डॉक्टर साहब से।
2: अगर फैटी लिवर हो गया है तो मैम कौन सी एक्सरसाइज करें और क्या खाएं और क्या ना खाएं?
0: बबीता जी अगर आप प्रोग्राम शुरू से सुन रहे हैं तो मैं हर क्वेश्चन के एंड में बता रही हूँ कि ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या खाएं ना क्या ना खाएं, लेकिन मोटे मोटापे मतलब मोटे मोटे तौर पर ताज़ा फल और सब्जियां ज्यादा खाएं और एक्सरसाइज जो आपको सूट करे जो आप कर सकें। अगर आप मान लो अब आप गांव में रहती हैं, मैं आपको कह दूं आप जिम चले जाओ, आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है और मैं आपको कहूं नहीं आप दौड़ लगाओ जबकि आप दौड़ नहीं लगा सकते, तो जो आपको शरीर अपने समय और अपने घर की जो नॉर्मल दिनचर्या है उसके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप एक कोई एक एक्सरसाइज उठा लो और रोज उसको 1 घंटे करो,
2: ओके
0: ठीक
2: मैम।
0: है। हाँ ऐसे कोई स्पेसिफिक तो वो हर टेलर मेड होती है चीजें ना, हर चीज एक आदमी के हिसाब से होती है, वो आप देखेंगे कि आपको क्या कन्वीनियंट हो रहा है और आप किस चीज में कंफर्टेबल है। रही बात खान पान की, तो तेल घी ये सारी चीजें, तले हुए पदार्थ कम करें, प्रोसेस फूड ना खाएं, कोशिश करें कि ताजा खाना बनाएं, एक समय बनाएं उसी समय बनाकर यूज करें और अपने खाने में फल सब्जियां बीज ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीजें ज्यादा इन्वॉल्व करें और तली हुई चीजें और प्रोसेस फूड ना खाएं, ठीक है
1: जी
0: बबीता जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। और इसी तरह से कुछ खाने पीने पे काफी मैसेजेस हमारे आए हैं और एक वेट पे काफी लोग बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखकर भेजा है पीलीभीत से तिलक ने, मेरी दीदी की उम्र 47 ईयर्स है, उनका वेट 85 kgs है और उनका पेट लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उन्हें रोज एक्सरसाइज करने के लिए कहता हूं तो वो कहती है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है और एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूं, तो क्या एक्सरसाइज वो कर सकते हैं और उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ये?
0: जी देखिए मैंने अभी दो गोल्डन
1: जी
0: नंबर आपको बताए थे, 102 सेंटीमीटर आदमी जो मेल है उन्हें याद रखना चाहिए और 88 सेंटीमीटर है वो औरतों को याद रखना चाहिए। ये उनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, अगर इससे ज्यादा है तो आपके रिस्क जो है वो बढ़ रहे हैं, ये ओबिसिटी भी है और आपके फैटी लिवर डायबिटीज इन सब के रिस्क भी बढ़ जाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपना वेस्ट मेजर कर लीजिए और अगर आपको ये इन नंबरों से ऊपर है तो फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। हर तरह की एक्सरसाइज आप जैसा कि मैं बता रही हूँ बार बार कि हर आदमी के लिए एक कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती कि हम कहते भाई आपको ये करना है तो करना है, आप अपने हिसाब से शुरू कीजिए, धीरे धीरे घूमना शुरू कीजिए या जो भी आपकी बॉडी को
1: जी जी
0: कन्वीनियंट
1: जी
0: लगता है शुरुआत उससे कीजिए।
1: जैसे मुझे लग रहा है कि वो बहुत विगरस एक्सरसाइज के लिए उनको फोर्स कर रहे होंगे,
0: हाँ
1: वो
0: भाई
1: नहीं कर पा
0: ऐसा
1: रहे।
0: नहीं हो सकता ना कि अचानक आपको आज कह दिया जाए जाइए 10 किलोमीटर दौड़ लगाकर आइए, तो
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: नहीं होता, इट हैज टू बी ग्रेडेड। आज अगर आपने 15 मिनट किए तो अगले हफ्ते फिर आप 20 मिनट आइए, फिर ऐसे
1: जी
0: 25, फिर
1: धीरे धीरे
0: बढ़ाइए
1: शुरुआत करें।
0: धीरे धीरे शुरुआत, हर चीज नीचे से ऊपर ही जाती है ना, ऐसा नहीं होता कि अचानक एक दिन में सारी चीजें
1: बिल्कुल
0: हो
1: बिल्कुल
0: जाती
1: सही
0: हैं।
1: बात है।
0: और वेट लॉस और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो इट गोज अ लॉन्ग वे, ये तो एक लाइफ, हम बात करें लाइफ स्टाइल यानी जिंदगी भर आपको ये चेंजेस अपने में लाने हैं, ऐसा नहीं है कि हमने 2 महीने किया कि दवाई भाई 15 दिन का कोर्स दिया खत्म हो गया, ये हम कह रहे हैं बार बार लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, मतलब
1: जी
0: जो आपकी जीवन शैली है उसको आप बदलाव डालें, तो ये तो धीरे धीरे आएंगी, एक दिन में तो ये बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ये जो फर्क पड़ा है ये इतने सालों में पड़ा है ना, आप एक दिन में थोड़ा मोटे हो गए, एक दिन में थोड़ा फैटी लिवर आ जाता है, इट
1: बिल्कुल
0: टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो वैसे ही बदलाव में भी नेचर में खान पान में वो लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे बदलाव आएगा, एकदम तो कभी भी किसी में भी बदलाव लाना मुश्किल होता है।
1: जी बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे जो डॉक्टर साहब बोल रही है, वी हैव टू मेक चेंजेस इन आर लाइफ स्टाइल,
0: जी
1: है ना। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और लौट के आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में और साथ ही बात कर रहे हैं खाने में होने वाली मिलावट के बारे में। हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, मैं हूं शालिनी मित्तल, सुनते रहिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और खाने में होने वाली मिलावट, इसके होने वाले नुकसान पर। और हमारे एक श्रोता हैं जो फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो
1: जी नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार।
1: मेरा पेट काफी बढ़ रहा है जी, दिन के दिन 2-3 महीने से तो काफी बढ़ गया। मैम उठने बैठने में तो काफी दिक्कत हो रही थी, तो कैसे समझा जा सकता है इसके बारे में जरूर बताएं मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।
0: तो पेट बढ़ रहा है तो हाँ मैम, बहुत देर से बोल रही है कि आपके खाने पीने का, आपकी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें आप गौर करें
1: जी मैम।
0: जी, एक्सरसाइज करें। ये तो मैं ही बता दी, मैंने ही बता दिया क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठी हुई हूँ, तो इतना तो समझ में आ गया। आपने अभी ट्यून किया है क्या कार्यक्रम?
1: यस मैम,
0: जी जी
1: ऑन किया
0: जी
1: मैम।
0: जी तो आप ऐसा है, आप हमारे साथ रहें, हम कार्यक्रम के अंत में एक बार पुनः बात करेंगे मैडम से कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और उसमें मैम काफी सारी चीजें बताएंगी हमें कि किस तरह से हम फैटी लिवर को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यशपाल हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से
2: जी
0: कि नमस्कार कर रहे हैं, साथ ही लिख रहे हैं माई क्वेश्चन इज कि आई हैव बॉर्डर लाइन हाई LDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड SGPTDO, आई नीड मेडिकेशन। तो क्या ये इससे कुछ जुड़ता है जो आप
2: देखिए
0: आज?
2: यशपाल जी,

0: आपके आसपास या किसी ने आपको ये टेस्ट करवाने को बोला होगा ना, या तो ये ब्लड टेस्ट होते हैं, तो जिन भी डॉक्टर ने आपको ये बोला है करवाने के लिए, एक बार आप उनसे जाएं और संपर्क करें, वो आपको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, और जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं फैटी लिवर के, वो करवाएंगे इन ब्लड टेस्ट के साथ, और फिर देखेंगे कि कितना रिस्क है, उस हिसाब से वो आपको बता देंगे कि इनिशियल आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है या कोई दवाइयां लेने की जरूरत है।
1: जी, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर से तरुण लिख रहे हैं, मेरी उम्र 43 इयर्स है और मेरा वजन 63 केजी है। मुझे मोटे होने से डर लगता है, इसलिए मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, पर लोग मुझे कहते हैं कि उम्र के हिसाब से मैं थोड़ा पतला हूं, तो क्या मेरा वजन उम्र के हिसाब से ठीक नहीं
0: देखिए, ये
1: है?
0: हमें अपनी बॉडी इमेज से ना कभी हम खुश नहीं होते। जो मोटा होता है उसको लगता है कि हमें हम ज्यादा मोटे हैं, जो पतले होते हैं उन्हें लगता है वो हम पतले हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आप जो लाइफस्टाइल, जीवन शैली जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है, और उसको आप मेंटेन करके रखें, उससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। इम्पोर्टेंट बात है हेल्दी होना, और आइडियल बॉडी वेट आप अपना हाइट और वेट के हिसाब से चेक कर लें कि क्या होता है। अब लोगों के हिसाब से तो जीना बड़ा मुश्किल होता है ना
1: जी,
0: ये
1: अगर
0: मुश्किल
1: आपका
0: ही है।
1: वेट वो आप
0: जी
1: जैसा मैडम ने बताया है और सरकमफ्रेंस भी
0: जी
1: आपने कई
0: जैसा
1: बार
0: कि वेट
1: बताया।
0: सर्कमफ्रेंस मैं कई बार बता चुकी, 102 आदमियों के लिए और 88 सेंटीमीटर औरतों के लिए, तो आप ध्यान रखें कि आप इन दोनों नंबरों से नीचे ही रहें, तो वो बेहतर है आपके लिए।
1: जी, संदीप कुमार लिख रहे हैं मुजफ्फरनगर बिहार से, मेरी उम्र 34 इयर्स है, मेरा पिछले कई वर्षों से फैटी लिवर ग्रेड 1 है। मैं नियमित एक्सरसाइज, रोज स्विमिंग करता हूं, खाने पीने में फल सब्जियां नियमित रूप से खाता हूं, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाता हूं, क्या ये रिवर्सिबल है? इसे रिवर्स होने में कितना समय लगता है? मुझे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: संदीप जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको जो जो चीजें हम बता रहे हैं इस प्रोग्राम में वो आप सब फॉलो कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल डेफिनेटली है, और आप लगे रहिए इन सब चीजों के साथ और इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये नहीं है कि भैया मैं 6 महीने करके फिर छोड़ दूंगा तो फिर वापस दिक्कत हो जाएगी। तो आपकी जो लाइफस्टाइल चल रही है उसको आप मेंटेन करें, तो आपका जो लिवर है वो भी हेल्दी रहेगा।
1: जी, और मोहम्मद इब्राहिम लिख रहे हैं श्रीनगर से कि माय रिक्वेस्ट इज रिगार्डिंग यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फ्रूट्स। हम थोड़ी देर पहले बात कर
0: जी
1: रहे थे
0: जी
1: कार्यक्रम
0: जी
1: में
0: जी
1: कि इस तरह से पेस्टिसाइड्स भी यूज होते हैं और उनको फ्रूट्स एंड देयर रीपिंग बिफोर देयर नॉर्मल टाइम, उनको पहले ही तोड़कर फिर उनको
0: जी
1: प्राकृतिक रूप
0: प्रकृतिक रूप
1: से
0: से
1: पकाया
0: पकाया
1: जाता है।
0: जाता
1: जी,
0: है।
1: कुछ केमिकल्स यूज किए
0: जी
1: जाते हैं,
0: जी
1: तो इनका प्रश्न इसी से संबंधित है कि क्या ये भी हार्मफुल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए?
0: जी ये हार्मफुल है, इसलिए कहा जाए हमेशा कहा जाता है कि मौसमी फल और सब्जियां खाइए, कि जो जिस मौसम की फल और सब्जी अगर हम खाएंगे तो फिर किसान को भी इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे ना चीजें पकाने के लिए, कि भाई जो गर्मी की चीजें हैं, जो सर्दी की चीजें हैं वो हम चाहते हैं हम गर्मी में खा लें, गलती तो हमारी ही है। हाँ, तो इसीलिए हमें जो सीजनल फ्रूट होता है वो उसी समय उन्हीं को खाना चाहिए, और डेफिनेटली पेस्टिसाइड्स और फूड एडल्ट्रेशन तो नुकसानदायक है ही है, तो उसका तो फिर अलग विषय में, इस पर तो अलग विषय में बात होनी
1: जी
0: चाहिए,
1: जी
0: पर
1: जी
0: जी हाँ इनके नुकसान है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जिस मौसम का फल हो वो खाएं, क्योंकि वो उसी मौसम में प्राकृतिक रूप से ही बड़ा हुआ होगा और हमें नुकसान भी नहीं दिया होगा उसमें, और उसमें एडल्ट्रेशन की मात्रा कम से कम होगी।
1: जी हमें ये प्रश्न किया है, लिखने वाले का नाम मुझे नहीं इधर मिल रहा है। इन्होंने लिखा है कि रात को खाना मैक्सिमम कितने बजे तक खा लेना चाहिए? खाने के तुरंत बाद सो जाना कितना सही है?
0: रात को खाना 7 से 7:30, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 7 से 7:30 के बीच में अपना रात का खाना खा लें, और उसके खाने के एकदम बाद बैठ के 2 घंटे टीवी ना देखें, कोशिश करें कि आप आधा पौना घंटा टहलें, उसके बाद किसी तरह का हल्का फुल्का व्यायाम करें, और खाने के एकदम बाद सोना तो किसी भी मायने में हेल्दी नहीं
1: नहीं
0: होता है।
1: नहीं
0: एटलीस्ट खान जो लास्ट हमारा मील है वो सोने से 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए, जिससे पाचन क्रिया जो है वो हो जाए सोने से पहले पहले।
1: जी, और ये दूसरा प्रश्न है भेजने वाले सुशील ठाकुर, ये लिख रहे हैं कितना खाना चाहिए? रात में कितना
0: ये
1: खाना
0: तो अब आप डिसाइड करिए कि आप कितना और क्या खाना चाहते हैं। वैसे
1: जी
0: रात का खाना हल्का होना चाहिए, सबसे भारी नहीं होना चाहिए।
1: जी
0: सुबह का नाश्ता सबसे हैवी मील होना चाहिए, फिर जो लंच है वो थोड़ा उससे हल्का, और रात का खाना सबसे हल्का
1: जी
0: जिससे वो
1: जी
0: जल्दी पच जाए।
1: अच्छा, एक प्रश्न मेरा है डॉक्टर साहब कि अगर किसी को पता लग भी जाता है, जैसा आप कह रही हैं कि फैटी लिवर बहुत कॉमन है, घबराने की जरूरत नहीं है कोई,
0: जी
1: पर कोई इतना रिलैक्स हो जाए कि वो फिर उसके आगे कुछ चेंजेस करे भी नहीं और उसको लगे कि कुछ ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल है, तो क्या उसके आगे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो
0: जी
1: सकते हैं?
0: जैसे कि मैंने बताया, जो फैटी लिवर है वो एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज है, जिसका जो

0: सबसे नीचे वाली सीढ़ी है अगर हम बात करें तो वो है फैटी लिवर। उसके बाद जब इन्फ्लेमे जब फैट जो है वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो स्टियो हेपेटाइटिस शुरू हो जाता है, यानी एक तरह की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है लिवर के सेल्स में, जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टियो हेपेटाइटिस। और अगर इस समय भी हम ध्यान ना दें, लाइफस्टाइल ना मॉडिफाई करें, और साथ में हमें कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, डायबिटीज है, ऐसी बीमार मोटापा है, और हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आगे जाके चांसेस हैं कि हमें फैटी लिवर डिसीज हो सकती है आगे जाके, जिसमें हमें सीएलडी जो सिरोसिस ऑफ लिवर है वो हो सकता है। और सिरोसिस ऑफ लिवर की सारी कॉम्प्लिकेशंस जैसे पेट में पानी भरना, साइटिस होना, गफलत में आ जाना, हेपेटिक एनकेफलोपैथी होना, और आगे चल के लिवर का जो कैंसर है वो भी हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज पे, नॉन कम्युनिकेबल जो एक डिसीज होती है, इस पे प्रोग्राम शुरू किया है। अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि नीचे के लेवल से लेके और टर्शरी केयर हॉस्पिटल तक सब जो हेल्थ केयर वर्कर उस लेवल पे होते हैं उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कि कैसे फैटी लिवर डायग्नोज करना है, कैसे हमें एक स्टेज को दूसरी स्टेज में जाने से रोकना है, और जब तक चीजें रिवर्सिबल हैं मतलब वापस नॉर्मल हो सकती हैं, सब लोगों को मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है, और ये जागरूकता फैलानी है कि भाई आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए जिससे ये फर्क पड़े और रिवर्सिबल होकर आपका लिवर जो है वो नॉर्मल हो जाए।
1: जी, और कोई भी बीमारी से बचना सबसे अच्छा होता है, या
0: प्रिवेंशन इज
1: प्रिवेंशन इज
0: ऑलवेज
1: ऑलवेज
0: बेटर
1: बेटर देन
0: देन
1: क्योर।
0: क्योर।
1: तो हम कार्यक्रम समाप्त करें, अभी समय है हमारे पास थोड़ा सा, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी एक श्रोता हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़े थे तो वो भी कह रहे थे, कुछ मैसेजेस भी आए थे, तो मैंने उनको यही कहा कि ये बात हम पुनः आखिर में करेंगे, जिससे हमारे जो श्रोता बाद में भी जुड़े उन्हें भी लाभ मिल सके कि प्रिवेंशन क्या है इसका, और अगर प्रिवेंशन के लिए हम वर्क करना चाहें, चाहे जिसको नहीं हुआ है या जिसको ग्रेड 1 है या स्टार्टिंग है, ये सबके लिए बताएं कि एक जो टिप्स जो है आपकी तरफ से आज के।
0: देखिए, एक तो जनरल मेजर्स हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए, कि हमें जनरल मेजर हैं जो आपको फैटी लिवर है, आपको नैश है, आपको नेफल्ड है, या आप जनरल है, मैं आप इसमें सब आ गए,
1: जी
0: ये कुछ चीजें हैं जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। वो है कि हमें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए सबसे पहले, जैसे कि हमने बात की थी नशे के ऊपर, एक क्वेश्चन भी
1: हाँ
0: आया था,
1: जी जी
0: हमें किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। पीयर प्रेशर में आके सोशल, उसके लिए आजकल बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से अल्कोहल सभी पीते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हैवी अल्कोहल यूज है, एक तो आपका लिवर पहले से ही डैमेज है, साथ में अगर आप ऊपर से अल्कोहल और स्मोकिंग करोगे तो वो और डैमेज हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फिर बहुत सारे हेपेटाइटिस के वायरस हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे यहाँ प्रचलन है, और कुछ लोगों कुछ के तो प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन है, तो हमें सबको अपने आप को इम्यूनाइजेशन जो इंजेक्शन है वो लगवा लेने चाहिए, जिससे एटलीस्ट हमारे लिवर पे दूसरा जो अटैक है किसी और चीज का वो ना हो फैटी लिवर के
1: जी,
0: साथ।
1: इंजेक्शंस कौन से
0: हेपेटाइटिस
1: हैं?
0: बी के,
1: अच्छा,
0: हेपेटाइटिस बी
1: हेपेटाइटिस
0: का
1: बी के,
0: वैक्सीन है जो
1: ओके।
0: हेपेटाइटिस बी बड़ी
1: हाँ
0: प्रिवेंटेबल
1: जी,
0: है, वो हमें करना चाहिए सब तरह के। और फिर आती है डाइट रिकमेंडेशन। डाइट जैसा कि मैंने बताया है कि हमें एक बैलेंस डाइट खानी है, ये नहीं है कि सिर्फ हम कार्ब्स नहीं खा रहे हैं, हम हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं। जिम जो लोग जाते हैं वो बड़ा प्रचलन है कि बहुत सारे हमने ये सप्लीमेंट्स ले लिए, हमने हाई प्रोटीन, हम बस प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं, बाकी चीजें हम नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, फैट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, और गुड फैट्स जो है वो हमें खाने चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, दालें जो होती है वो, और जो संतुलित भोजन जो होते हैं ना, एक थाली दिखाई जाती है हमेशा जिसमें
1: बिल्कुल,
0: सारी चीजें
1: और
0: हैं,
1: कलर्स भी
0: हाँ,
1: कहते
0: कलर्स
1: हैं
0: पे
1: कि अगर
0: कलरफुल फ्रूट्स,
1: जी
0: हमें 2 से 3 serving फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। हमेशा हेल्दी फैट्स खाने चाहिए, और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जो रेड मीट में होता है, जो फुल फैट जो डेयरी होती है ना वो उनमें होता है, और फ्राइड फूड्स जो होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, वो हमें नहीं लेने चाहिए। फिर ट्रांस फैट जो होते हैं, जो हम प्रोसेस्ड फूड की बार बार बातें कर रहे हैं, वो सब हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। और पोर्शन कंट्रोल पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये
1: अच्छा
0: नहीं कि हम इतनी बड़ी थाली भर के बैठ जाए, हमें अपने पोर्शन को धीरे धीरे कम करना चाहिए, और कैलोरी काउंट करके वो खानी चाहिए कि भाई इतनी कैलोरी हम खाएंगे, इतना कम पोर्शन, धीरे धीरे हमें पोर्शन कम कर देना चाहिए, और बैलेंस होना चाहिए। साथ में फाइबर जो है उस पर बहुत स्ट्रेस होता है, फाइबर इंटेक हमें बढ़ा देना चाहिए, और खूब पानी पीना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। फिर एक्सरसाइज पे हम बात कर ही चुके, जो भी आपको सूट करे अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, वो आपको एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफस्टाइल का एक परमानेंट हिस्सा बनाना ही बनाना है, क्योंकि जब वेट अगर हमारा लॉस होगा

0: हमारा जो फैटी लिवर है या नैश है या हम लिवर डिसीज तक पहुंचने वाले हैं वो सब कंट्रोल हो, और साथ में इनके एसोसिएटेड जो भी बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हाइपरटेंशन, वो भी कंट्रोल होंगी। एक्सरसाइज से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो एक्सरसाइज से आपको फायदा होगा। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, आपको रेगुलर, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये आपको रेगुलर अपनी जिंदगी का, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है इनको रोज।
1: जी, तो बहुत सारी बातें आज डॉक्टर साहब ने हमें बताई फैटी लिवर से संबंधित, कैसे इससे बचा जा सकता है, अगर हो जाता है तो भी आपने बताया इसको रिवर्स किया जा सकता है, और कैसे हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए,
0: हाँ,
1: है ना।
0: एटलीस्ट 1 घंटा एक्सरसाइज, विग्रस एक्टिविटी जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए। शुरुआत आप धीरे धीरे कीजिए, लेकिन आप 1 से सवा घंटे का एक्सरसाइज आप रोज रखिए, जिसमें आपका सांस फूले बात करते हुए ना।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो टेस्ट होता है कि आप एक्सरसाइज करें तो आप किसी से बात ना कर पाए, आपको इतनी एक्टिविटी हो रही है, इस तरह की एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं और
1: जी जी
0: पसीना भी नहीं आ रहा और सांस भी नहीं चढ़
1: अच्छा।
0: रहे हैं।
1: मतलब
0: हाँ,
1: विग्रस होनी
0: विग्रस
1: चाहिए।
0: एक्टिविटी होनी चाहिए,
1: जी
0: फिजिकल
1: जी
0: एक्टिविटी।
1: तो हमारे आज बहुत सारे मैसेज आए हैं जो इस बात को ये दर्शा रहे हैं कि हमारे श्रोता काफी वेट
0: हाँ
1: कॉन्शियस हैं,
0: जी जी
1: बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं और कुछ
0: जी
1: लोग कोशिश कर रहे हैं,
0: जी
1: तो हमें लगता है आज का जो ये कार्यक्रम है उसको सुनकर आपको काफी फायदा हुआ होगा, लाभ मिला होगा, और कुछ जो जिज्ञासाएं थी मन में, कुछ शंकाएं थी, कुछ समस्याएं जो आपकी थी।
0: एटलीस्ट अवेयरनेस है,
1: जी
0: व्हेन लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एटलीस्ट वो अवेयर हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कि आपको पता है कि कहीं
1: जी
0: प्रॉब्लम है।
1: शुरुआत तो वहीं से
0: शुरुआत
1: होती
0: तो
1: है,
0: वहीं से होती है कि यू नो कि देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर।
1: बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला है डॉक्टर साहब, और इतनी सारी जो शंकाएं हमारे श्रोताओं के मन में थी उसको आज दूर करने में आपने मदद की है। तो हमारे साथ आज रेडियो डॉक्टर के रूप में डॉक्टर वैशाली भारद्वाज रही, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर RML हॉस्पिटल। हमारी आज बातचीत काफी गहन हुई और हमने
0: जी
1: काफी कुछ सीखा आपसे, पता चला हमें फैटी लिवर को हमने जाना, साथ ही साथ फूड सेफ्टी, फूड एडल्ट्रेशन के होने वाले नुकसान क्यों होता है और कैसे हमें अपने खाने में बदलाव करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें काफी कुछ जानकारी मिली। तो आपको अगर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं, सुझाव भी लिख सकते हैं, हमें मेल लिखिए healthairdelhi@gmail.com पर, और बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। आप रोज जुड़ते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के साथ FM रेनबो 102.6 पर, और इस कार्यक्रम में आपको हम प्रतिदिन कोई ना कोई नई जानकारी देते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और अब स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: हमें लगता है तू सारे काम कर देने होंगे है ना, सारे दे काम।
1: सारे ही काम नहीं
0: किए। ये भाई जो फोन नहीं चकदे है ना जी। चलो कोई ना अंकल जी, गाने का नाम दसो वधिया जिहा, फिर आपां लाईए। नाम लगूगा भूल भुलैया।

0: हाँ जी दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम हेलो जलंधर मी एंड मी विद माय पापा। पापा थैंक यू बोलो सारा नू।
1: कहता थैंक यू बोलना
0: है? मेरा मिलने मेनू बोलो थैंक यू क्योंकि मैं तो मतलब स्वागत किया।
1: थैंक यू
0: रेंद पापा जी, ये तो जंगत है ना तुसी अमी ओ खा लो गुड़ खा लो चाय चुप चाप बैठे रहोगे मीठा मीठा मुंह बोलूंगे ना तुसी। नवे शहरों से जुड़ चुके ने। हेलो
2: हेलो पापा जी पहली पहने जी।
1: नमस्ते जी अंदर है मुंडे है की नाम तेरा?
2: सनी भगत बोल रहे पार कैंप जलंधर से।
1: सनी बहुत बहुत स्वागत है पुत्र तेरा।
2: भोले पाजी नमस्कार जी।
0: अंकल नमस्ते, तुसी पापा नु जानते हो?
1: वैसे गल कर ही चुका नी। ऐ देखो जी सनी जी मम्मी ने रौला पाता, मैं जी ए सोचा मैं बड़े तरीके ने गई जा, मैं मम्मी नु ऐ पटा लिया जी ए चुटकिया जे देख लो यार सारा जी करता बिलो ने मेरी।
2: नींबू
0: पानी मेन तो कहते गले च हड्डी जाम पपड़ बसिया है।
2: मछली
0: बड़ी बड़ी फड़दा।

0: हां जी दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम हेलो जलंधर ते मैं विद मैं अपने पापा खट्टी जी आवाज वाली पापा सॉरी मैंने इदा कहना नहीं चाहिए पर वो खुद कहंदे इदा कह लिया कर वेल साडे नाल नवे सिरे ते जुड़ चुके ने हेलो
1: हेलो भोला साहब जी किदा
0: अंकल जी नमस्ते तुसी मेरा नाम बोले वाओ थैंक यू सो मच
1: हां जी महाराज मैं नाम बोलिया पापा जी ना बड़ा लड़ाई चल रही की गल हो गई अज्ज

हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, इस दे नाल ही हुन प्रोग्राम अपना कहने मतलब एक तुसी FM 102.7 MHz सुन रहे हो ते आकाशवाणी जलंधर दा यह रेनबो चैनल है ते हुन तुसी युवा साथी अपना प्रोग्राम सुनोगे युवाणी।

0: सोहान जी, मैं क्या जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, अद्दाब, मेहरबान, कदरदान। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते करदे आ तुहाडा स्वागत दोस्तों आकाशवाणी जलंधर दा एक केंद्र है ते मैं तुहाडी दोस्त आरजे रितिका, मेरे नाल
1: मैं हाँ थोड़े दिला दी धड़कन ते चेहरे ते मुस्कान लियान वाली थोड़ी आरजे दोस्त दीक्षा।
0: ते दोस्तों असी लेके आ गए हैं हमेशा दी तरह तुहाडा फेवरेट प्रोग्राम
1: जुबानी। जी दोस्तों, इसी दे नाल असी अज दे सैगमेंट्स दा वेरवा कर दिंदे आ। कहंदे ने जदों असी किसी मूवी देखनी हुंदी आ तां सबने पहले असी देखदे आ ट्रेलर, है ना, तो फिर असी मूवी देखन जाने आ। ते इसी दी तरह साडा प्रोग्राम भी है, जे असी अपने प्रोग्राम दा वेरवा नहीं देवांगे तां किवें तुसी इन्ने ज्यादा एक्साइटेड होवोगे पूरी पिक्चर देखन दे लई। जी दोस्तों, सबने पहले आएगा जी साडा वर्ड एक्सप्रेस ते वर्ड लेके आए आप थोड़े लिए बड़ा ही अच्छा। ते फिर आएगा जी साडा गल तजुर्बे वाली एक स्टोरी लेके आए हैं, वह भी बड़ी अमेजिंग स्टोरी है जिहड़ी तुहानू जरूर मोटीवेट करेगी। और फिर आएगा जी साडा सब दा फेवरेट सैगमेंट फिल्मी नंबर वन, जिहदे
0: इस दे लई मैं तो बहुत एक्साइटेड हाँ, दीक्षा तुसी मेरे तो ज़्यादा एक्साइटेड हो।
1: जी रितिका, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हाँ और मैंने लगता साढ़े तो भी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे साढ़े
0: लिसनर्स। बिल्कुल सही क्या। ते मैनू लगता है, मैनू ना पिछली बार मैनू याद है यार, सानू ना विच ही कॉल आने लग पियां सीगियां। ते दोस्तों तुसी कुछ नहीं करना है, तुहानू पहले दस चुके हैं असी कि फिल्मी नंबर वन दे लई तुसी सानू कॉल करनी है, उस दे नाल नाल मैसेंजर दे उपर मैसेज करने ने। पर तुहानू पता है उस तो पहला असी कुछ वधिया जी गल भी कर लईए,
1: गलबात करनी है। रितिका, अजकल दे टाइम विच असी देखिए तां ना छुट्टियां जिहड़ियां हैगियां आ ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, है ना, गर्मी बहुत ज्यादा वध गई है। ते फिर की कहंदे आ, शाम नू सवेरे गर्मी बहुत ज्यादा होंदी है, शाम नू मौसम जिहड़ा खराब हो जांदा है।
0: मैं क्या जी, जिहड़ा मौसम है ना दीक्षा, इन्हें तो पता नहीं वक्रा ही रंग दिखाना शुरू कर दिता है। जून के महीने जो मीह पैंदा है असं हैरान हो जाते हैं, सवेर नू तपदी धुप हुंदी है ते शाम दे वेले किद्दां
1: बिजली, सही गल है, बिजली बदल, हाँ बदल सब कुछ देखने नूं मिल जांदा है, अलग ही नज़ारा देखने नूं मिल जांदा है। ते इस दे विच ना की हुंदा पिया, जिहड़े साडे बच्चे है ना जिन्हां नूं छुट्टियां पईआं होईआं और दूसरे जिहड़े कामकाज से जांदे आ, है ना, उन्हां नूं भी इक अद्धी छुट्टी मिल ही जांदी है, बचा के रखदे आ ना कि साडे जिहड़े यूथ है कि हाँ भी असीं घूमन जावांगे, दो तीन छुट्टियां इकट्ठे ले लवांगे असीं। ते इस कारण है कि उह जा नहीं पा रहे पहाड़ां वल, देखिए तां आपां लैंडस्लाइड वगैरह हो रहीआं ने, ते किते होर वल जाईए तां सब कुछ इदां। ते इस दे चक्कर च असीं सारा दिन की करदे रहिंदे आ,
0: मैं दस दिनी हाँ, सारा दिन असं बैठे रहने कमरिया के, क्योंकि धुप्प च असं घूम नहीं सकते, पहाड़ा के कुदरती आफतों ने घेरिया होया, तो बैठना तो फिर घर के ही, तो घर के वेले थोड़ी ना बैठ सकते हैं। अजकल जी आप लैके बैठ जाने फोन, तो फोन ना डेली होंगे रील स्क्रोलिंग।
1: हाँ बिल्कुल, बच्चे भी अपना सारा टाइम है जो स्पेंड करते हैं फोन के, जो सोशल मीडिया अलग अलग ऐप्स में यूज करते रहते हैं, सीरीज देखते रहते हैं। तो फिर अगर किसी फ्रेंड्स के बैठ जाओ ना, तो फिर यही गल सुनने मिलती है।

0: पॉजिटिवली लेना या फिर नेगेटिवली।
1: बिल्कुल, सपने वड्डे जरूर देखो, पर शुरुआत तुसी छोटी जी चीज़ तो करो। अगर तुसी छोटी जी चीज़ तो शुरुआत करोगे तो तुहाडे वड्डे सपने भी एक दिन जरूर पूरे होणगे। तां बस शुरुआत करदे रहो ते जिंदगी दे विच फट्टे चकदे रहो जी।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है जी युववाणी, तो सैगमेंट चल रहा फिल्मी नंबर वन। इसी के नाल सानू कॉल्स बहुत ज़्यादा आ गई ने, तो साढ़े नाल पहले लिसनर भी जुड़ चुके ने, गलबात करते हैं उन्होंने। हैलो
1: हेलो मैडम, गुड इवनिंग जी।
0: गुड इवनिंग जी, की हाल चाल थोड़ा?
1: ठीक है जी। मुल्लापुर जाखा मंडी तो रजेश जैन बिट्टू बोल रहे जी।
0: जी रजेश जी, फिर असी क्वेश्चन पूछा सीगा एक कि जिवें अज अमरीश पुरी जी का बर्थडे आ, उन्होंने बहुत सारे विलनस के रोल किए हैं, सो तुसी हमें एक पॉजिटिव रोल दसना है कि कहड़ी मूवी दे विच उन्होंने पॉजिटिव रोल किया है।
1: पॉजिटिव रोल बहुत फिल्म कई फिल्म किए हैं
0: जी,
1: जिवें एक गीत चल रहा है घातक फिल्म का।
0: बिल्कुल जी जी, तुसी बन गए जी साइड।
1: वो कई फिल्म किए यार, सावन पाने दे विच भी किया उन्होंने फादर का रोल।
0: वाह, तुसी तां मैनूं लगदा कि सारियां फिल्मां देखदे सीगे अमरीश पुरी।
1: अमरीश पुरी जी नंबर 1 विलन जी हिंदुस्तान दे
0: जी,
1: उनार का काम नहीं कोई कर सकदा जी।
0: अच्छा जी, कोई फिर डायलॉग सुना दो उनां दा, फेमस डायलॉग सुना दो।
1: जिवें मिस्टर इंडिया विच रोल कीता, लोहा फिल्म विच रोल कीता, बहुत जबरदस्त रोल सी उनां दे।
0: हाँ जी हाँ जी, अब जी बहुत शुक्रिया साढ़े नाल जुड़न दे लई, और फिल्मी नंबर 1 सैगमेंट दे विच तुसी आए और सानू बहुत वधिया लग्या। जी दोस्तों, तुसी भी बन सकते हो फिल्मी नंबर 1 सैगमेंट दे फिल्मी नंबर 1 सैगमेंट दे विनर। इस दे लई तुहानू आ की करने पैना, सानू बहुत सारियां कॉल्स करनियां पैनियां, एंड कॉल्स करन दे लई तुसी नंबर नोट कर लो 01812342174, और तुसी साढ़े सोशल मीडिया पेज ते भी बहुत ज़्यादा आंसर भेज सकते हो, बहुत ज़्यादा आंसर भेज सकते हो, क्योंकि तुसी फेसबुक ते जा सकते हो, आकाशवाणी जलंधर दे नाम तो साडा पेज है। और फिलहाल तुहानू असी एक डायलॉग सुनाउण लगे हां, और तुसी ओह डायलॉग सुनना और दसना है कि ये किस मूवी का डायलॉग सिगा और कदों आई मूवी, तुसी ऐ दसना है। जी दोस्तों, एक बारी असी फिर सुना दिन्ने आ तुहानू डायलॉग। जी ये तो बहुत सारे लोगों ने जड़ा है कि डायलॉग सुनिया होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है, बट तुसी यह दसना है कि इस मूवी का नाम की है और यह मूवी आई कदों। तो बस तुसी सानू कॉल्स लगाओ, एक बार फिर नंबर रिपीट कर रही हूँ मैं 01812342174, एंड तुसी सानू मैसेजेस भी कर सकते हो, बट कॉल्स करोगे तो

हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, की हाल ने थोड़े तुसी सुन रहे एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। ते समा हो गया है 6 बज गए ने, ते तुसी हुन सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी कहंद पावे, अपना मन पसंदीदा शो लव यू जिंदगी। मैनू पता कि बहुत सारे सरोते साडे ने जिहड़े इस शो नू बहुत ज़्यादा पसंद करते ने। क्यों पसंद करते ने वह भी दसांगे थानू, तो जे नवे स्रोते हैं सानू, जे नवे नवे साडे स्रोते जे जुड़ते हैं उन्होंने भी पता लगे कि ये शो इन्ना स्पैशल क्यों है। सत श्री अकाल जी, जो दिन भरन की जी दौड़ भज तो बाद शाम का सूरज टलता है ना, दिल थोड़ा सुस्ता चाहता है। बस उस पल 102.7 एफ एम रेनबो से शुरू होंदा है तुहाडा अपना शो लव यू जिंदगी हर शाम ठीक 6 बजे, वह भी लाइव। यार लव यू जिंदगी सिर्फ ना आप गल करते हैं, एक हम सफ़र है जो थोड़े टुटे हौसलों जोड़ता है। इतने हंजू भी हसते ने, दर्द भी गाँवता है, तो हार के भी ना जित का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि जिंदगी सवाल नहीं, ये तो वो जवाब है जिन्हों रोज़ जीना पैंदा है। दोस्तों कहते ना मोटिवेशन लाइन है ना, एक रुकना नहीं, झुकना नहीं, हार के भी हार मनना नहीं, जे रात काली है तो की होया सवेर तो तेरी ही होनी है। जिंदगी नू गले लाओ, लो शिकवे सारे भुला लो, जो कल नहीं सी अपना वह अज बना लो। डिग के उठन वाले नू ही दुनिया सलाम कर दी है, लव यू कह जिंदगी नू यह तो तेरे नाम कर दी है। क्या बात है जी, क्या बात है। कहते ना एक असली हीरो की जी मैं पहचान दसदा दोस्तों की अभ्यास दियाँ बेमिसाल ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਦੋਸਤਾਨਾ, ਯਾਰੀ, ਪਿਆਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਾਨ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੈ।

रैंडी जे पैटरसन। तो गल करते हैं दोस्तों दी अपसाइड ऑफ स्ट्रेस, यानी कि तनाव नू डर वांग नहीं ऊर्जा वांग देखो दोस्तों। तनाव नू असी अपना दुश्मन मना मानते हैं, लेकिन कई बार जिहड़ा तनाव है ना, इस गल का संकेत होंदा है कि कोई चीज साडे लई महत्वपूर्ण है। जेकर प्रीख्या, कम जां किसे जिम्मेदारी नू लैके चिंता होंदी है, तां इसका मतलब यह है कि असी उसकी परवाह करते हैं। तनाव नू डर वांग नहीं ऊर्जा वांग देखना सीखो। यह कैली मैकोनियल गिल ने कहा सी। उस तों बाद आंदा दोस्तों लिविंग फॉरवर्ड, यानी कि तुसी जीवन च की हासिल करना चाहते हो। बहुत लोग ना जीवन नू बिना किसी स्पष्ट दिशा देना जीते हैं, ते ना बाद में सोचते हैं कि वह असल च की हासिल करना चाहते सन। इसलिए समय समय से रुक के ये सोचना जरूरी है कि असी किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी विद RJ रमनीश। दोस्तों असी गल कीती सी ना कि लिविंग फॉरवर्ड दी आपां गल कीती सी कि तुसी जीवन च ना की हासिल करना चाहुंदे हो। मैं दोबारा दस्सां दोस्तों, बहुत लोग ना जीवन नू बिना किसी स्पष्ट दिशा दे जिउंदे हन अते बाद च सोचदे हन कि उह असल च की हासिल करना चाहुंदे सन। इसलिए समय समय ते रोक के ना यह सोचना जरूरी है कि असी किस तरह का जीवन जिउणा चाहुंदे हां अते साडे लई सब तो महत्वपूर्ण की है। जीवन व्यस्त रहन दा नाम है दोस्तों, जीवन व्यस्त रहन दा नाम है। उस तो पहला असी गल कीती सी कि तनाव नू डर वांग नहीं ऊर्जा वांग देखो। तनाव नू असी अपना दुश्मन मानते हाँ, लेकिन कई बार ना तनाव इस गल का संकेत हुंदा है कि कोई चीज जिहड़ा साडे नाल महत्वपूर्ण है, जेकर प्रीख्या काम जां किसी जिम्मेदारी नू लैके चिंता हुंदी है ना, तां इसदा मतलब है कि असी उसकी परवाह करते हाँ। तनाव नू डर वांग नहीं ऊर्जा वांग देखना सीखो दोस्तों। इस तों बाद मैं गल करदा, लगातार अभ्यास करोगे तो दूजे तो अलग दिखोगे दोस्तों। एक गल तुहानू मननी पवेगी कि किसी भी खेतर च ना महारत जिहड़ी अचानक नहीं मिलती। इस नाल जिहड़े कई सालों का अभ्यास, धीरज अते सीखण की इच्छा चाहीदी है। शुरुआत च ना गलतियां होना सुभाविक है। असी ना एक गलती नूं मन लग जांदे कि यार असी गलती करती आ, असी उह करता, असी इस तरीके नाल दुनिया नूं समझ लैंदे आ कि गलती कीती तां समझ लो गलत हो गया ते असी गलत आ, असी मतलब एज ए लूजर आ, असी कुछ होर भी सोच लैंदे। कितना कुछ सोचते होंगे दोस्तों, अलग अलग सोचते होंगे, पर जो तुसीं जिंदगी जिउणी सीख लैंदे ना तो पता लग जांदा है। तो की हुंदा तुहानूं वी पता है दोस्तों, जो लोग ना लगातार अभ्यास करते हैं ना वह हौली हौली ना दूजे तो अलग दिखाई देन लग जाते हैं दोस्तों। ये तुसीं मनना मनो, पर जेकर तुसीं आपां कहिंदे ना एक्सरसाइज करते हैं तो जो असीं ना 3-4 महीने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी ना तो थोड़ी बॉडी ना शेप आनी शुरू हो जाती है। तो असी नहीं, असी अपने आप को पछाण पाइए ना पाइए, पर लोग सानू आके दसन लग जाते यार तेरे विच ना कुछ चेंज लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कंसिस्टेंसी नाल ना जिहड़ा अभ्यास किया। कंसिस्टेंसी इज़ वैरी इंपॉर्टेंट गाइस। तुसी बहुत सारी अगर किसी की इंटरव्यू सुनते होंगे ना तो यही कहते हैं, काम करते रहो, भावें थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहो पर काम करते रहो। दोस्तों 6:19:30 हो चुके हैं, तो हुण कुछ ही समय में 6:20 के विच तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां ते 10 मिनट की खबर होगी। उस तो बाद असी लव यू जिंदगी नूं दोबारा ज्वाइन करांगे।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
3: एक कहानी है एक हाउसवाइफ ते ओदी अंतरात्मा दी। बिजली दा बिल, करियाना, स्कूल दी फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए। ता नवी साड़ी ले लवो?
3: ना, पिछले महीने ही ता लई सी।
4: एक होर?
3: नहीं, पहला बजट बनाओ, फिर छोटियां छोटियां बचतां नू बैंक च बचा के रखो ते पैसियां नू वध दे वेखो।
4: वड्डी आई
3: हुण जा भैणे।
5: RBI कहिंदा है
3: वित्तीय समझदारी खुशहाल नारी।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा

दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी ते एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। दोस्तों कोशिश दी गल करिए ना तो कोशिश ना ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये जिंदगी दा निचोड़ है। कोशिश वो दीवा है जो हनेरी रात च भी बुझण तो इनकार कर दिंदा है। कहंदे ने कि लहरां तो डर के

हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, आखिर से ही कहूंगा कि जिंदगी रुसे ना हंसे, तू बस प्यार करी जा, हर सा हर पल नु शुक्रिया कही जा, क्योंकि जेड़ा लव यू जिंदगी कहता है ना, रब ओदे हंजू भी मोती बना देता है। रब रखा दोस्तों, जल्द ही मिलांगे नवी उम्मीद नाल। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।

नमस्कार, शाम दे वज गए ने 7 ते पेश ने एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। बीजेपी के कौमी प्रधान नितिन नवीन ने कहा कि पछमी बंगाल की तरह पंजाब की माड़ी कानून व्यवस्था, गैंगस्टरवाद, नशे और नौजवानों का प्रवास सूबे और समुचे देश लई चिंता का विषय बने ने। बीजेपी कौमी प्रधान नितिन नवीन ने कहा कि अज लुधियाणा दे विच पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के सबका उप कुलपति पद्मश्री नाल सन्मानित एस एस जौल दे नाल मुलाकात की। पंजाब मंत्रिमंडल के विद्यार्थियों ते मापिया के हितों की राखी करन, उद्योगिक विकास में उत्साहित करन, डिजिटल गवर्नेंस में मजबूत करन, प्रशासनिक पहुँच में सुधार लियाउण ते उद्देश नाल कई अहम फैसले ले गए। पंजाब सरकार वालों 24 जून को मोहाली विखे NRI मिलनी 2026 का आयोजन किया जाएगा। गुरदासपुर च अपर बारी दुआब नहर और तरन तारण रजबाज

0: इसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: बार गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, मेरे पास वक्त नहीं है बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

वाजवा, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत गीत और बचपन दी यादा ताज़ियां हो गईयां नी इस गाने नूं सुनन तों बाद। करण अर्जुन मूवी दा बहुत ही कैंट गीत, सलमान शाहरुख होणा दी बहुत ही कैंट केमिस्ट्री, एंड इस फिल्म दे विच जिन्हां ने विलन दा किरदार निभाया सी उहदे बारे विलन दा जो शुभ चिंतक हुंदा सी इह जरूर कहिंदा सी ठाकुर तो गयो। और ठाकुर कौन सी? नन अनदर दैन अमरीश पुरी साहब। सो अज अमरीश पुरी साहब का जन्मदिन है, 22 जून 1932 नूं पंजाब दे नवां शहर दे विच अमरीश पुरी जी का जन्म हुंदा है। उन्हां दे पिता जी सरकारी नौकरी करदे ने, इसलिए उन्हां नूं बचपन दे कुछ साल दिल्ली दे विच भी गुजारे। दिल्ली दे विच अमरीश पुरी जी दे पिता रिटायर हुंदे ने, फिर उस तों बाद शिमला शिफ्ट हो जांदे ने अपने परिवार नूं लैके। सरकारी नौकरी दे दौरान उन्होंने दा जदों शिमला ट्रांसफर होया सी तां शिमला दे विच रहना उन्हां नूं रास आ गया सी। परिवार को लेकर शिमला ट्रांसफर हो गए। शिमला दे विच उन्होंने काफ़ी समा गुजारे, इसलिए उन्होंने शिमला दे विच परमानेंट ठिकाणा बना लिया। 10वीं तक पढ़ाई जिहड़ी है अमरीश पुरी जी दी शिमला दे विच ही हुंदी है। 12वीं करन दे लई होशियारपुर पहुँचते हैं, फिर ग्रैजुएशन करन दे लई वापस शिमला आ जाते हैं साथियों दे नाल। उस साल 1953 दा सी जो अमरीश पुरी जी पहली बार नौकरी की तलाश के शिमला तो बॉम्बे पहुँचते हैं। उन्होंने उम्र महज 21 साल की हुंदी है, क्योंकि उन्हां दे दो वड्डे भरा चमनपुरी अते मदनपुरी फिल्मां दे विच काम कर चुके सी। उस वक्त तां अमरीश पुरी जी नूं फिल्मां दे विच प्रति आकर्षण रहा, ओह वी फिल्मां दे विच काम करना चाहुंदे सी। पर मदनपुरी ने अमरीश पुरी जी नूं समझाया कि शुरुआत विच छोटी फिल्मां तो इहदे विच जेकर तुसीं करोगे तां उस विच फसे रह जाओगे, बेहतर है कि उस नूं खुद नूं थोड़ा जिहा पॉलिश करके अगे वधो। नौजवान अमरीश पुरी जी ने अपने भरा दी गल उदों समझ ही नहीं आई उन्हां नूं, पर हौली हौली उन्होंने पहला नौकरी करन दा तय किया। फिर उस तों बाद उन्होंने सोचा कि थिएटर दे जरिए अपनी कला नूं निखारांगे, फिर उस तों बाद फिल्मां दा रुख करनगे। 1954 दे विच पुरी साहब ने स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट दे विच नौकरी दा काम करना शुरू किया। उस तों बाद नौकरी करदे ही उन्होंने अगले साल 21 सालों तक यह नौकरी की। कहते हैं कि 1975 के अमरीश पुरी ने नौकरी तो अस्तीफा दे दिता। नौकरी के शुरुआती सालों के अमरीश पुरी जी ने जो थिएटर का रास्ता नहीं प्राप्त होया सी, इतफाक उन्होंने ऑफिस विच एक उन्होंने साहब होंदे सी जो थिएटर के नाल जुड़े हुए थे। एक दिन अमरीश पुरी जी ने उन्हां साहब नूं कहा कि मैं थिएटर ज्वाइन करना चाहुंदा, तो साहब ने अमरीश पुरी अपने नाल नाट्य संघ लैके चले गए। अमरीश पुरी जी ने उत्थे नाट्य संघ ज्वाइन किया। इब्राहिम अलका जी साहब उस वक्त नाट्य संघ दे संचालित करता सी। उन्होंने सारी कहानी आप लेख लिखी है जो थानू इस तो बाद सुनाने। फिलहाल तुम बने रहो FM बैंड 102.7 MHz FM रेनबो के उत्ते। मैं थोड़ा मित्र RJ प्रविंदर अज अमरीश पुरी जी बारे होर गल्लां बातें करांगे। बने रहो साढ़े नाल।

इन अ थिएटर अमरीश पुरी जी ने खुद किया। अमरीश पुरी जी ने अलका जी ने पूछा तो अमरीश पुरी जी ने कहा, अमरीश पुरी जी ने जो पूछा तो अमरीश पुरी जी ने कहा यस सर। इब्राहिम अलका जी ने फौरन अपने टेबल के उत्ते ड्रॉर खोली, एक स्क्रिप्ट कट के अमरीश पुरी जी ने हत्थां थमा दी। उत्थे ऑर्थर मिलर वालों लिखे गए अंग्रेजी दे एक नाटक की स्क्रिप्ट लिखी हुई सी, ते नाटक का नाम सी ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज। इब्राहिम अलका जी ने अमरीश जी ने कहा कि मेन करैक्टर एडी कार्बन नू स्टडी करो। अमरीश पुरी जी बड़े हैरान होए, उन्होंने इब्राहिम अलका जी ने कहा साहब मैं अजे सिर्फ ज्वाइन करना आया मगर तुसी मेरे हथा दे विच अंग्रेजी नाटक की स्क्रिप्ट दे दिती है। उस वेले इब्राहिम अलका जी साहब ने कहा कि इसनों पढ़ो, हुण तुहानू देखना चाहते हैं तो समझना चाहते हैं कि तुम कर की सकते हो, इसको पूरा पढ़ो, मेन करैक्टर समझने की कोशिश करो और कल तो क्लासिस के आ जाओ। साथियों के नाल अमरीश पुरी साहब थिएटर के करियर की शुरुआत करते हैं। 7-8 दिन तक इब्राहिम अलका जी साहब और अमरीश पुरी जी थिएटर के इनवॉल्व हो जाते हैं। उस तो बाद उन्होंने तमाम तरह की ट्रेनिंग क्लासा सब मिलती ने। उस तो अगले साल तक अमरीश पुरी जी खुद को थिएटर के लिए ट्रेन करते रहते हैं। नाटक का मंचन होंदे तो अमरीश पुरी साहब जिस तरीके अभिनय करते हैं, उन्होंने अमरीश पुरी जी का पहला हिंदी नाटक प्राप्त जिहड़ा होंदा है बिच्छू, जिस दे विच सत्यदेव दुबे नू डायरैक्ट करन दा मौका मिलता है। इब्राहिम अलका जी साहब के अंडर नाट्य संघ का जो एक साल का कोर्स से अमरीश पुरी साहब ने पहले स्थान के नाल पास होकर सम्मान प्राप्त किया। उस तो बाद कोर्स खत्म होने तो बाद सत्यदेव दुबे ने अमरीश पुरी जी के नाल जो नाटक किया अंधा युग दे विच धृत राष्ट्र का जो किरदार निभाया, तो अमरीश पुरी जी ने एक इंटरव्यू दे विच दस्या सी कि पहला सत्यदेव दुबे जो उन्होंने देखा सीगा तो लग्या सी कि नाटक वह बनाउणगे, पर खुद बच्चे ने तो अमरीश पुरी जी लगता सी कि सत्यदेव दुबे उम्र दे विच अमरीश पुरी तो छोटे सन, पर अमरीश पुरी जी ने सत्यदेव दुबे जी की डायरैक्शन दे विच काम किया तो रियलाइज़ होया कि सत्यदेव दुबे थिएटर जगत का एवें ही वड्डा नाम नहीं हैं। नवंबर 1962 सत्यदेव दुबे ने नाटक का अंधा युग का मंचन किया। उस तो बाद मंचन दे विच इब्राहिम अलका जी टैरिस के उत्ते कुल 14-15 शोज़ आयोजित उस दे नाटक दे कर चुके सन। अंधा युग नाटक तो बाद अमरीश पुरी जी थिएटर दी विच पूरी तरह रम गए। उस तो बाद उन्होंने नाटकों के काम किया जिमें कि आषाढ़ का एक दिन, इनकलाब, तोता मैना, होर बहुत सारे नाटक, और सारी रात नामक नाटक अमरीश पुरी जी निर्देशन दौर विच उन्होंने काम किया। उस तो बाद 1962 दे विच 1962 तो लैके 1971 तक अमरीश पुरी साहब थिएटर के लिए काम करते रहे। 1971 दे विच अमरीश पुरी जी पहली बार उन्होंने फिल्म प्राप्त होंदी है। उस फिल्म दे विच सुनील दत्त साहब और रेशमा शेरा, बहुत लोग कहते हैं कि देवानंद साहब के नाल प्रेम पुजारी अमरीश पुरी जी की पहली फिल्म सी, पर यह गल गलत है। अमरीश पुरी जी ने खुद दस्या कि उन्हें पहली फिल्म सी रेशमा और शेरा, तो यह सी अमरीश पुरी साहब हुणा दी पहली फिल्म एंट्री की कहानी। फिलहाल तुसीं बने रहो FM बैंड 102.7 MHz दे उत्ते। उन्हां दे एक फिल्म दा होर गीत तुहाडे नाल सांझा करदे आं, फिर उस तो बाद गल नूं कंटिन्यू करांगे जनाब।

0: माँ के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते।
1: तैसी अमरीशपुरी साहब जी का खतरनाक डायलॉग, मतलब आवाज़ दे विच गड़क बहुत ज़्यादा होंदा सी। सवाओ समा बहुत घट रह गया, इन्हां दीआं कुछ यादगार फिल्मों बारे गलबात कर देने। सब तो पहले डायलॉग की गल करिए, तो कहिंदे ने कि इन्हां दा करैक्टर सीगा जी मिस्टर इंडिया दे विच 1987 दे विच जिहड़ी फिल्म बनती है मोगैम्बो खुश हुआ। इह किरदार सिनेमा जगत दा विच बहुत वड्डा मशहूर है। उस तों बाद चौधरी बलदेव सिंह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दे विच इन्हां ने जो किरदार निभाया वह भी काबिले गौर है। अशरफ अली गदर एक प्रेम कथा 2001 दे विच फिल्म बनती है, कट्टर गुस्से वाले पिता की भूमिका होंदी है। ठाकुर दुर्जन सिंह करण अर्जुन 1995 दे विच बनती है, जिस विच क्रूर चाचे का किरदार यह निभाते हैं। सो अज तक इन्हां दे किरदार नूं हमेशा याद किया गया। यादगार फिल्मों की जेकर गल करिए बहुत वड्डी लंबी लिस्ट है। उस तों इलावा उन्हां दे विचों कुछ फिल्मों के नाम मैं ला दिना जी, रिश्ते, बधाई हो बधाई, जानी दुश्मन, नायक, गदर, यादें, सेंसर, जुबैदा, बादल, तक्षक, ताज, आरजू, जुल्मी और बहुत वड्डी लिस्ट है जी। तकरीबन दसते ने कि 450 तो अधिक फिल्मों के काम किया और हरेक फिल्म यादगार है। इन्हां दे दित्ते हुए योगदान नूं हमेशा याद रखा जाएगा और इस तरीके दे नाल असी इन्हां नूं सजदा करदा रहांगे, इन्हां नूं ट्रिब्यूट दिंदे रहांगे। कहिंदे ने कि 12 जनवरी 2005 नूं 72 साल की उम्र दे विच ब्रेन ट्यूमर की वजह दे नाल इन्हां दी अचानक मौत हो जाती है। अचानक इस निधन तो बाद बॉलीवुड जगत दे नाल नाल पूरे देश दे विच सोग की लहर जिहड़ी है वह दौड़ जाती है। कहिंदे ने इन्हां दी जीवन की अंतिम फिल्म सी किसना, जिस तों बाद 2005 दे विच रिलीज़ हुंदी है। उस तो बाद इस फानी संसार नूं अलविदा आख जांदे ने। इन्हां दे डायलॉग इन्हां दी फिल्मां अज भी साडे कोल मौजूद ने और इस दे जरिए ये साडे कोल जीवत ने। फिलहाल बने रहो साडे नाल FM बैंड 102.7 MHz दे उत्ते। मैं तुहाडा मित्र आरजे परविंदर इसे तरीके दे नाल एंटरटेनमेंट नूं कंटिन्यू करांगे अगले प्रोग्राम दे विच। मैं तुहाडा मित्र आरजे परविंदर, स्टे ट्यून।

ज्यादा चोरी चोरी नहीं करना, अंबा दे बागे च चोरी पता किन्नी होंदी अजकल। मतलब तुहानू पता लंगड़े अंब का नाम लंगड़ा अंब क्यों पिया? मैनू एक मुंडा कहिंदा लंघ मार के तुरदा सी अंब। मतलब सोचने वाली गल है, अजकल लोग अंब बहुत खाते हैं, कोई दशहरी अंब खाता, कोई लंगड़ा अंब खाता। लंगड़े अंब बारे कभी सोचा तुसी? वट इज़ यूअर नेम लंगड़ा आम वाई? मतलब ये तो सी मजाक की गल। सो आओ हम मसाला मिक्स के बारे गल करते हैं। कहिंदे बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है कि लंगड़ा आम नाम आखिर पिया किवें। कहिंदे कि लंगड़ा आम का नाम बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इस जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के इतिहासिक शहर वाराणसी बनारस के नाल है। लगभग 250-300 साल पहला बनारस दे विच एक फकीर रहिंदे सी, एक मंदिर दे विच रहिंदे सी। उत्थे उन्होंने अंब का एक पौधा लगाया सी। वो साधु पैर तो लंगड़े सी, यानी कि उन्होंने चलण दे विच मुश्किल हुंदी सी। उन्होंने बड़े प्यार दे नाल अंब के बूटे पालिया। जब उस बूटे पहली बार फल लगे तो अंब इन्ने स्वादी रसीले सी अते खुशबूदार सन कि उन्हां वर्गा अंब पहला किसे ने नहीं सी चखिया। साधु वह अंब मंदिर आने वाले लोगों अते स्थानक निवासियों नूं प्रसाद वजो वंडदे हुंदे सी, क्योंकि वह बूटा उस साधु ने लगाया सी। खुद तुरन तो असमर्थ सीगे, थोड़ा तकलीफ हुंदे सी, लंगड़े सी। इस लई हौली हौली उस खास अंब नूं लंगड़े साधु वाला अंब कहण लगे। समां बीतण तों बाद इना होर छोटा हो गया, किस्म का नाम पक्के तौर पर लंगड़ा आम पै गया। हुण लंगड़े अंब दीआं बहुत सारियां किस्मां ने। कहिंदे रंग अंब पकण तो बाद भी बाहरों हरा रहिंदा अते पीला नहीं हुंदा। गुद्दा अते गिटक की जेकर गल की जाए, पल्प यह बहुत मुलायम हुंदी है, रेशा रहत हुंदी है, यह गूढ़े पीले रंग का हुंदा, जबकि इसकी गिटक बहुत पतली हुंदी है। बनारसी लंगड़ा इस लंगड़े अंब नूं इसके खास स्वाद के नाल पछाण करके देखा जाता है। सो यह सी इसकी छोटी जी कहानी। सो इदा दीआं बहुत सारिया कहानियां थोड़े नाल शेयर करन दे लई अते बहुत सारा मसाला मिक्स करन दे लई, मतलब एक तरह की इनफॉर्मेशन नहीं होएगी, जिवें असी गल करदे आं कि गल कीती ते इनफॉर्मेशनस दे विच इनफॉर्मेशन मिलाई जा रही, बट अज सिर्फ इनफॉर्मेशन नहीं, असी मसाला मिक्स करांगे, मतलब बहुत सारिया गल्लां शेयर करांगे। तो बने रहो साडे नाल FM 102.7 MHz दे उत्ते। मैं तुहाडा मित्र RJ प्रविंदर, स्टे ट्यून।

0: मैं मर जावा, मैं मर जावा।
1: नहीं नहीं नहीं इदा काम नहीं करना। क्यों यार ना मिले तो मर जावा, क्यों मरना, जिंदगी बड़ी कीमती होंगी है ना। तो इदा काम बिल्कुल नहीं करना जी, बस गाने तक ही रहो। जे असल च कुछ हो गया ना तो बहुत बड़ा खाम है जब भुगतना पै सकता है। मतलब कुल मिला के गल यह है कि जिंदे रहो, आबाद रहो। तो कई लोग कहते हैं जिंदे रहो परा रहो, की कहते हैं जिंदे रहो परा रहो। मतलब उन्होंने लोगों की भी कहावत, मतलब उन्होंने लोगों की भी कहावत बनी है जेडे तंग करते हैं। कहते हैं किसी ने पैरी हथ लाया एक बंदे नूं ते बड़ा तंग सी उहदे कोलों, कहता भरा तू जीउंदा रह पर परा रह। सुन अगली खबर, जानकारी जिहड़ी तुहाडे नाल मैं सांझी करांगा। कहते हैं कि जलेबी दे नाल जलेबी किवें पै गया। हुण बंदा जलेबी नूं जलेबी ना कहे ते की लड्डू कहे। चलो कलाकंद भी कह लो जे तुहाडा दिल करदा। मतलब की कलाकंद ना कहीए, हदवाणा कह दिए, खरबूजा कह लिए, खरबूजा ठीक रहूगा। तो मतलब ठीक है, हासा मजाक अपनी जगह। हुण आओ जो इनफॉर्मेशन दे उत्ते। इनफॉर्मेशन दे विच की है जी, कहिंदे ने कि इनफॉर्मेशन दे विच कि जिहड़ी जलेबी है उसदा नाम जलेबी किवें पै गया। छोटी जी इनफॉर्मेशन है, कहिंदे ने कि जलेबी दा नाम जलेबी इस करके पै गया। इतिहास कहिंदे ने बहुत पुराना है, फारसी शब्द है जलेबिया, परशियन शब्द। इस अरबी शब्द अते अरबी शब्द जलाबिया तो जुड़ के बनया जलेबी। यह मिठाई मूल रूप तो पछमी एशिया तो ईरान तो आई सी। इस दे विच रमज़ान दे विच बनाई जाती सी। मध्यकाल विच तुर्की अते फारसी व्यापारियों के वलों इस नूं भारत लियांदा गया। भारतीय लोगों ने इसकी मिठास अते चाशनी दे अनुपात नूं देखते हुए स्वाद अनुसार इस नूं ढाल लिया। हौली हौली जलेबियां तो यह लोकप्रिय नाम जलेबी बन गया। जलेबी दिलचस्प इतिहास, अपने मध्य पूर्व की जेकर गल की जाए तो भारत के रूप में सफर को जानने के लिए थानू बहुत सारिया कहानियां मिल सकदियां ने। जलेबी एक घुमावदार है डिश है जो कि कुछ भारतीय खेतरां दे विच जिसे जिस विच मावा, इमरती, इस दे होर सारे टाइप्स जिहड़े सानू देखण नू मिल सकते हैं। पर की तुसीं जानदे हो लोगों की बहुत वड्डी पसंद हो चुकी है जलेबी दे विच भारती शब्द। यह जलेबिया तो आया सी पर मेरे ख्याल ना बहुत घट लोगों नू यह पता होगा। तो मेरे ख्याल ना जलेबी का नाम हुण यह भी दस दिने जलेबी पिया किदा। कहिंदे पहला जिवें दस्सिया गया कि अरब फारसी शब्द सीगा। इस तों इलावा एक होर जिहड़ी कहानी निकल के सामने आउंदी है, कहिंदे अरबी शब्द जलाबिया तो अते फारसी शब्द जलेबिया तो निकल के सामने आया। मिठाई मूल रूप तो मिडल ईस्ट ईरान की है। इस तो इत्थे इस नूं जुलबिया कहा जाता सी। 13वीं शताब्दी दे विच तुर्की अते फारसी आक्रमणियां दे व्यापारियों ने इस नूं एक व्यंजन जो लैके आए भारत दे विच ओह ही सी। इस नूं जुलबिया कहा जाता सी 13वीं शताब्दी दे विच जो व्यापारी अते आक्रमण लैके आए तो अक्रांता लैके जो भारत आए तो भारत पहुँचने तो बाद स्थानक लोगों ने भाषावां दे उचारण दे विच जलाबियां नूं बदल के इसनों जलेबी कर दिता। इतिहास के बहुत सारे कुछ तत्थ प्राचीन उलेख दे विच 13वीं सदी दे विच पुरानी कुकबुक किताब अल तबीख दे विच जलाबिया दा जिक्र जड़ा है प्राप्त हुंदा है। भारतीय दस्तावेज दे विच भारतीय जिस विच 15वीं सदी दे विच जैन ग्रंथां दे विच जलेबी का नाम तो भी इसका प्रमाण जड़ा है वह प्राप्त हुंदा है। पारंपरिक नाम की जेकर गल की जाए तो इसनों रमज़ान के दौरान जुलबिया नाम के नाल उत्थे खाया जाता है। इस तों इलावा जलेबी वक्ख वक्ख भारतीय संस्कृति दी विच शामिल हो चुकी है। जलेबी दे विच असीं बदाने भी देखते हैं कि सेम टेस्ट थोड़ा बहुत मैच हुंदा है। मावा जलेबी भी कह सकते हैं। इमरती जिहड़ी है वह खाधी जाती है। तो मतलब हुंदा ना कि भारत दे विच जदों कोई चीज़ आ जाती है

बात सी पर तू ना समझ सकी, ए साहां दी मुलाकात सी पर तू ना समझ सकी, कुछ अणछुहे जज्बात सी पर तू ना समझ सकी, साडी कल्यां दी औरात सी पर तू ना समझ सकी।

0: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतने के लिए। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप के मुकाबलों की पल पल की खबर। भारत के सारे मुकाबलों का सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलों का अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर के FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
1: वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात, क्या बात है। एक कहने जा गीत साड़ियाँ धियां भी बहुत पंजाब दियाँ देश दियाँ तैयार बैठिया ने वर्ल्ड कप प्राप्त करन दे लई। हुण अगली खबर जिहड़ी है, कहिंदे नवें नियम अनुसार चलदी ट्रेन दे विचों भी किसी व्यक्ति नूं स्टेशन तों

प्रोग्राम चल रहे जी दिल चाहते हैं जी एफएम एंड इसको 2.7 मेगाहर्ट्ज़ दे उते और कहंदे ने कि फिल्म दुश्मन तो गाना सुना दियो जी बोल बलमा सिपाहिया हाय रे तेरी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी कमला रानी जी भानु प्रकाश

रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त आज कार्यक्रम का आगाज हो चुका है शाम में गजर। कहते हैं कि एक लम्हे में बिखर जाता है।

कहते हैं कि किससे जाकर मांगिए दर्दे मोहब्बत की दवा, किससे जाकर मांगिए दर्दे मोहब्बत की दवा, चारा गर अब खुद ही बेचारे नजर आने लगे। 102.7 FM।

से मोहब्बत की दवा, किससे जाकर मांगिए दर्दे मोहब्बत की दवा। चारा गर अब खुद ही बेचारे नजर आने लगे। 102.7 FM रेन।

कहते हैं कि मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारा घर ये तेरी। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारा घर ये तेरी। नवाजिश ये मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा ना दे। 102.7 FM रेनबो।

कहते हैं कि बेनाम साये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता। 102.7 FM रेनबो, शाम गज़ल।

नमस्कार दोस्तों, रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे परविंदर। कहते हैं कि इस समय कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, एक प्यार का नगमा है। कहते हैं कि शहर की रात और मैं ना शाद और न कारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे अवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, एगम में दिल क्या करूं, वहशत दिल क्या करूं। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

कहते हैं कि अजीज इतना ही रखो कि संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि सुना है रातों से चांद तकता रहा, सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। 102.7 FM।

कहते हैं कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किस किस से। इलाज अपना करवाते फिर रहे हो, जाने किस किस से। मोहब्बत करके देखो, मोहब्बत क्यों नहीं करते। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि इन अंधेरों से सूरज कभी निकलेगा नजीर, इन अंधेरों से ही सूरज कभी निकलेगा नजीर, रात के साए जरा और निखर जाने दे। 102.7 FM।

कहते हैं कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। 102.7 FM रेनबो।